0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद
4: फाल बनाए सूबे में इमरजेंसी है गवर्नर राज लागू करे छो गवर्नर फैसल करीम कोनी सूबे जो इंतजामी सरबराह मुकर सदर आसिफ अली सरदारी केपीके में इमरजेंसी लागू करने वाले वफाकी काबिना जी समरीय तेज सही करे छी ऐवान सदर जी पदराई मौजूद केपीके में सरकारी हंधन है कानून लागू कर इदारन ते दहशतगर्दन हमलन में वात थी सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी लाकानूनियत जो तदारुक करण में नाकाम रही मौजूदा हालतन सबब केपीके हुकूमत नथी हलाए सकदी आईन जे आर्टिकल 232 224 तहत सदर आसिफ अली सरदारी एमरजेंसी लगाने की समरीय तेज सही कई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सुनिए

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अच्छा समिन प्रोग्राम रोशन सुबह बुधा अमां बुधा पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां जो मेज़बान ने मतलबु जुड़े जो साईं मुंहिंजा इंसान वीचारो पंहिंजे पीढ़ीअ लाइ पंहिंजे महबूब लाइ छा छा नथो करे झंग जबल बरपट जाॻे थो ऐं पंहिंजे पीढ़ीअ जे पसण लाइ रातिनि जा ओजागा हुनजे नसीब में लिखिजी वञनि था ऐं उहो इंसान पंहिंजे पीढ़ीअ जे सिंगार वास्ते पंहिंजा हार सिंगार बि तरक करे छॾे थो ऐं हू ॾिसे थो त सिर्फ़ु सिर्फ़ु पंहिंजे महबूब खे ॾिसे थो ऐं हू सोचे थो त सिर्फ़ु पंहिंजे महबूब लाइ ऐं हू ॻाल्हाए थो त बि सिर्फ़ु पंहिंजे पीढ़ीअ जी वाखाण में ऐं हू खिले तॾहिं थो जॾहिं हुनजो पीढ़ी खिले थो बसि हिकु इंसानु जॾहिं उन इश्क जे मंज़िल ते पहुचे थो तॾहिं हुन जे रूह में हुनजो महबूब बि समाइजी वञे थो पोइ हुन जी मंज़िल आहे उहा अॻिते त पंहिंजे महबूब सां गॾु कीअं थो हले त पंहिंजे महबूब खे ॿियनि खां कीअं थो लिकाए ऐं पंहिंजे महबूब लाइ छपर छांव कीअं आहे ऐं उन लाइ हार सिंगार कीअं थो करे ऐं इन लाइ त अखियुनि में थी वे त आऊं वारे ढकियां अखियुनि में थी वे त आऊं वारे ढकियां तोखे न ॾिसे ॾे आऊं न पसंदि की ॾियो

जी सिम जा पाण ॻाल्हि कंदासीं अॼु हिकिड़ी कतार जी, त कतार जी तमामु वॾी अहमियत आहे। जेकॾहिं असांजे इलाइक़नि में पंहिंजे शहरनि में गाॾियूं सी एन जी भराइनि थियूं, या अॼुकल्ह जेको पेट्रोल जो सिस्टम आहे, हिकिड़ो पर्ची सरकारी तरह पेट्रोल मिले थो, ऐं पर्ची कटण लाइ बि तमामु ड्रिघी कतार हूंदी आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां ए टी एम मशीन ते पैसा कढणु वेंदव त उन में बि कतार में बीहणो पवे थो। जेकॾहिं असां कंहिं अहिड़ी कंहिं जॻह का पैकेज मिलंदो आहे त उन में बि कंहिं कतार में बीह करे पंहिंजो सौदो वठिणो पवंदो आहे। ऐं साईं जा जेकॾहिं असां सारनि जो रोंबो कतार में कंदासीं त बि फसल तमामु सुठो थींदो। ऐं जेकॾहिं स्कूल में जेका शागिर्दनि जी असेंबली थींदी आहे ऐं उन सां गॾु उस्ताद बि उन सां गॾु साथ ॾींदा आहिनि, पर असां उनखे बि सिंधी में कतार ई चवंदा आहियूं। ऐं कतार कॾहिं बि ख़ुदि ब ख़ुदि नाहे पंहिंजो लॻंदी, उनखे ठाहियो वेंदो आहे। ऐं घणियूं कतारियूं आवाम जूं लॻंदियूं आहिनि, कंहिं बि शहर में दाख़िल थींदे ई जेकॾहिं तव्हांखे का कतार नज़र अचे त पक सम्झो त इहो शहर पंहिंजो आहे ऐं पंहिंजी सुञाणप आहे। बाक़ी पाणी भरण लाइ बि जेको आहे सो कतारनि में बीहणो पवंदो आहे। जेकॾहिं असांजा इम्तिहानी फार्म भरिजनि था ऐं शागिर्दनि जी रश हूंदी आहे, उहे बि कतार में बीहणो पवंदो आहे। हाणे आहिस्ते आहिस्ते कतारूं तमामु घणियूं ऐं ड्रिघियूं थींदियूं वञनि पियूं। कतारनि जे उन ई सिलसिले खे ख़तमु करण लाइ असांखे पंहिंजी सोच समुझ जी कतार जोड़णी पवंदी, इल्मु अकुलु ऐं फर्म जी कतार लॻाइणी पवंदी, तॾहिं वञी उन्हनि फालतू कतारनि मां असांजी जिंद छुटंदी ऐं पाण आज़ादु थींदासीं। त कोशिशि कयूं त पाण अहिड़नि सिलसिलनि खां अहिड़ी सोच खां थोरो पासो कयूं त जीअं कमु असांजो पंहिंजो आसान थी वञे, पर इंसान जी बेवफ़ाई न हुजे।

जी समझा प्रोग्राम रोशन सुबह मुदो पे जीएफएम 88 जे नेटवर्क ता वरी हन वक्त हलंदासी कमर्शियल ब्रेक की तरफ असा जो तमाम नंडो सवाल ए तमाम आसान सवाल है पाकिस्तान जी वडे में वडी कोर्ट केड़ी है उन जो वहां के नालो बुधानो है एसएमएस जरिए भी ए फेसबुक जरिए भी ए कॉल जरिए भी वहां असा के सवाल जो सही जवाब बुधाए सको ता करे मनो जो असा गड जो

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक. खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरत सिर्फ डी खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डींहं जो शो. अपराधक भाई बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
2: डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट ड्रॉप.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
4: Super White!
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
6: ॾाढो सुठो
5: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज़

शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि। जुमे ते 1 बजे खां 3 बजे ताईं मुफ्त चकास कई वेंदी आहे। राब्ते ऐं मालूम

चांद से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चांद से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम।

इनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों शुबारों शहरों शराहों वादियों पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों में रस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम तर सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन वयुम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आया नो सदस्पुल्ला बोंजोर चाओ निहाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइफ प्रोडक्ट्स.

सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. और इस प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीकेकार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKI टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/glrkanafm88.8 और GAFM88 के पेज के ऊपर. इन दोनों पेजेस पे एग्जैक्टली एट द टाइम आपको एक ही लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलेगी और वो होगी सुपर वाइट वालों की, यानी के जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट. तो सुपर वाइट प्रोडक्ट इस ऑडियो स्ट्रीमिंग को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन तक शेयर करें फर्दर अपने पेजेस पे, प्रोफाइल्स पे, ग्रुप्स में, जहां मर्जी शेयर करें. लेकिन शेयर जरूर करें और मेक श्योर जितने लोग ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं वो शेयर के बटन को दबा के रखें, ठीक है. और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, इंक्लूडिंग सुपर वाइड कॉन्वर्सेशन. सो सुपर वाइड प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि बना रहे हैं आपके लिए बहुत मजे के प्रोडक्ट्स. और बहुत मजे के प्रोडक्ट्स वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लग पाए बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा हसीन. तो सुपर वाइड के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं. आप सुपर वाइड के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों ने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं छोड़ी है जो कि आप लोगों के लिए ना बनाई हो. तो सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों नहीं सॉरी सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं विटामिन सी क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट वाले ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी बनाते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन टाइप ऑयली है. इसके अलावा सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स की सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आपकी किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल और मजीद और इनहेंस कर दे, ठीक है. इसके अलावा फेस वॉशेस की बहुत अच्छी रेंज आती है. सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश आता है, सुपर वाइट का राइस फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश और सुपर वाइट का ऑयल फ्री एंटी एक्नी फेस वॉश. इतनी अच्छी और खूबसूरत बना देने वाली रेंज क्योंकि फेस वॉशेस में भी आती है. इसके अलावा सुपर वाइट जो कि आप लोगों के लिए और भी दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम, पेट्रोलियम जेली जिसमें अलग अलग किस्म के अच्छे अच्छे से वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं लाइक स्ट्रॉबेरी, लाइक पिंक, लाइक कोकाओ बटर. इतने अच्छे अच्छे वेरिएंट्स जो कि आप लोग इनके बाय करके यूज कर सकते हैं इस सीजन में जहां आपको पेट्रोलियम जेली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. तो सुपर वाइट वाले आप लोगों को देंगे एक अच्छी सी पेट्रोलियम जेली जिसका जार आप लोग बाय करके रख लें और पूरा सीजन इस्तेमाल करें. चाहे तो दो से तीन भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है जिन लोगों की खासतौर पर ड्राई स्किन होती है या जिन लोगों की एड़ियां जो हैं वो फट रही होती हैं इस सीजन में जो कि अब शुरू हो चुका है. नेल्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, तो यही वजह होती है जिसकी वजह से आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है. और पूरी पूरी 1 बजे तक आपका और मेरा साथ होगा. तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम अब आपकी खूबसूरती का फैन. वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा अवां अच्छन वारन खां परेशान आयो, पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओं रंग, नओं अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओं रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज़ में एतमाद। खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स, एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन खे बणाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब। आर्च ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
3: स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: लाड़काने वासन लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCBS डर्मेटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियन जो माहिर, हिते मोहिड़ा, डड्र, मल्लो, पुरानी खारस, वार चरो, पुराणो फट, चिटरी, लैशमिनासिस, चेहरे जा दाग, बग, नहन जो खराब थियण, वारन जा मसइला, एलर्जी ऐं औरतुनि जे चेहरे ते गैर ज़रूरी वारन जो इलाज बहितरीन नमूने कयो वञे थो। डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ीअ जे बीमारियुनि जो माहिर, एड्रेस अली हॉस्पिटल, वगड़ रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4:00 बजे खां रात जो 8:00 बजे ताईं ऐं आचर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03124344689।
5: अदा गुलाब तोखे त ख़बर आहे पाण वारो हनीफ़ घणे वक़्त खां बीमार आहे, कपिड़ा मेरा पातल पंहिंजे मुंहुं वती थो ॻाल्हाईंदो ऐं पाण खे त बीमार सम्झे ई कोन थो, को ॾस त ॾे इलाज किथां करायांसि।
6: भाउ जुमन अचु त तोखे ॾस ॾियां, सोल मेंटल हेल्थ लाड़काणे वारा माहिर नफ़्सियात जी निगरानीअ में इलाज बि मुफ़्त था कनि, सो बि घर वेठे ऐं हिक फोन करण सां।
2: लाड़काणे वासन लाइ खु़शख़बरी, छा तव्हां जे घर या पाड़े में को अहिड़ो मरीज़ आहे जंहिंजी सोच ऐं रवैये में तब्दीली आई हुजे, मिसाल जेको पाण खे बीमार न समझे, पंहिंजे मुंहुं खिले या ॻाल्हाए अजायो शक करे, सफ़ाई सुथराई जो ख़्याल न रखे, खेसि आवाज़ ॿुधण में अचनि जेके हक़ीक़त में न हुजनि।
6: अहिड़े मरीज़ खे शिज़ोफ्रेनिया या स्केज़ोफ्रेनिया जूं अलामतूं थी सघनि थियूं ऐं इहा मर्दनि ऐं औरतुनि में हिक जेतिरी ॾिठी वञे थी
2: ऐं इहा हिकु क़ाबिले इलाज ज़हनी बीमारी आहे ऐं बर वक़्त इलाज सां मरीज़ बहितर ज़िंदगी गुज़ारे सघे थो।
6: त पोइ अॼु ई राब्तो कंदा तव्हां जे मरीज़ जो घर वेठे मुफ़्त इलाज थिए ऐं हा, ठीक थींदड़ मरीजन खे फैज़ान नज़र रिहेबिलिटेशन सेंटर में हुनरी सिख्या पिण ॾिनी वेंदी।
2: पारा सोल मेंटल हेल्थ प्रोमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस शाह लतीफ़ मार्केट, मेन रोड, लाहौरी मोहल्ला, लाड़काणो।
6: राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0333-7538-456 ऐं 0346-3492712। खुशखबरी अल राफे फाउंडेशन ए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन लाड़काने जे सहकार सा आपका रियायती क्लिनिक लाड़काने में हाने मुख्तलिफ शोबन जा माहिर स्पेशलिस्ट ए तजुर्बेकार डॉक्टर हर किस्म जे बीमारियन जी इंतहाई रियायती फीस में चका सकंदा जड़ो के शुगर मैदे जिगर गुर्दे रगुन हडन दम छाती जहनी बीमारियन बाड़न जे बीमारियन खा अलावा सबनी बीमारियन जे इलाज लाए नामवर डॉक्टर्स मौजूद आहिन जड़ो के प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अबड़ो प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम सिद्दीकी प्रोफेसर डॉक्टर अजीज जलबाणी प्रोफेसर डॉक्टर बदर जुणे जो प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर बलोच प्रोफेसर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद डॉक्टर नईम अहमद सुमरो डॉक्टर अरशद भुट्टो डॉक्टर श्याम लाल वगैरह आपका रियायती क्लिनिक लाड़काणो जिते मिले अवां के कराची जे नामवर अस्पतालुन जेड़ो माहौल टाइम रोजानो सुबह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताई एड्रेस जीजल अमर वेलफेयर अस्पताल वेझो पासपोर्ट ऑफिस लाड़काणो राबते जे लाए मोहम्मद अली अबड़ो मोबाइल नंबर 03400362646
7: खूबसूरती वो जो नजर आए जैसे इन फूलों की बागात में कुदरत के हसीन नजारों में और चेहरे की खूबसूरती नजर आती है एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम एडलवाइस एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल वाइट एक्टिव कंबाइन व्हाइटनिंग फॉर्मूला डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम जो स्किन के अंदर लहर तक जाकर असर दिखाए जेल से डार्क स्पॉट्स रिंकल्स और दाग धब्बों को मिटाकर स्किन को क्लियर करे दिन बदन जेल्द को ब्राइट करे 3 दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाए और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ 5 स्टार कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल हेल्पलाइन नंबर 03073468474
6: खुशखबरी लाड़काने जो मशहूर है अगूणो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो फिफड़न जे बीमारियन जो माहिर MBBS DTCD FCPS इते टीबी नमूनिया पुरानी खंग बलगम में रत अचण रेजस फिफड़न में जारो पानी जो भरजन दम सहको साह की तकलीफ छाती के कैंसर जो इलाज कयो वञे थो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो फिफड़न जे बीमारियन जो माहिर एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज जेल रोड लाड़काणो क्लिनिक टाइम रोजानो सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आचर जे ॾींहुं सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी राबते जे लाइ 07440553777 ऐं मोबाइल नंबर 03012664439 याद रखंदा अपॉइंटमेंट टेलीफोन ए मोबाइल नंबर जे जरिए भी दिनी विंदी आहे
8: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची
9: हां भेण बस खबर ही कुछ एड़िया हाणे सा औरतूं भी पंहिंजी तकलीफ आसानी सा बुधाए सघू थियूं
6: जी हां सिंधु जी पहिरी फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी जंहिं पंहिंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मां लखे रुपया कमाइण बदिरां लाड़काणे में औरतुनि लाइ फ्री अस्पताल शुरू कई आहे जिते बुकिंग जी बीमारियुनि मसलन पेशाब में रुकावट जलन ए साड़ो जख्म बेउलादी बुकी ए मसाने जी नाली में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेजर ए चीरे वसीले करे थी याद रखना डॉक्टर साहिबा चकास बुकिंग जो अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियूं आहिन बस कमरे ए दवा जो थोरो खर्च मरीज पाण भरींदा ए हाँ एक्सरे IVP ए CT स्कैन पिण अध पैसन में कराए डे थी पेशाब वराना डॉक्टरन ॾांहुं मरीज खणी वेंदड़न जे भुलाइण ते तवजो न ॾियो एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर नद सिटी चौक सचल कॉलोनी लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं ऐं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं राबते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 03422241869 छा अव्हां खे या अव्हां जे कंहिं बि मिट माइट खे छिन गले जो गुदूद पिते जी पथरी थायराइड मौका
10: जी FM 88
11: सिंध की आवाज़

आदर्श वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और जिंदगी गुलजार है जिसको स्पॉन्सर कर रहा है सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय एक्सेल क्रिस्ट मॉडल. और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और सुपर वाइट वाले अगर यानी कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स अगर कहीं भी अवेलेबल नहीं है वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर्स नोट डाउन कर लेने हैं. सखर और लाड़काना वालों के लिए सबसे पहले हेल्पलाइन

सखर और लाड़काना वाले हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए. इमरान साहब से आप लोग जो है रब्ता करेंगे 0314775462. ठीक है, एक बार स्लोली रिपीट करेंगे 0314775462, 0314775462. ठीक है, ये सखर और लाड़काना वालों के लिए स्पेशली, और जो हैदराबाद वाले हैं वो रब्ता करेंगे मुमताज हसन खान साहब से. ठीक है जी, तो उनका नंबर है 0370256832. ठीक है, इसको डायल करेंगे और हैदराबाद वाले इस नंबर पर रब्ता करेंगे, जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट्स को वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे और उठाएंगे पूरा पूरा फायदा सुपर वाइट के प्रोडक्ट से, क्योंकि सुपर वाइट ही वो वाहिद प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को, आपकी खूबसूरती को सुपर से डुपर और सुपर से ऊपर बना रहे हैं. ठीक है, तो सुपर वाइट को खूबसूरत बना देने वाले

ब्लॉग जिनकी मैं बात कर रही थी और सुबह वाइफ की ऑयली ब्यूटी क्या कमाल की ब्यूटी क्रीम है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जिसको

टाइप ऑयली भी है और साथ में उनकी स्किन पे एक्ने भी है, और एक्ने चाहे आपकी किसी भी किस्म की हो, एक्ने निशानात वाली हो, एक्ने पस वाली हो, पिंपल्स हो, छोटे छोटे बम्प्स, तो उन सब को खत्म करेगी सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम। और सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के पहले ही 3 दिन के इस्तेमाल से आप वाजिब फर्क देखेंगे। लेकिन अगर

0: की ट्रेजेडी
1: और हाथों पैरों की स्किन जो है बेरौनक हो गई है और केयर ना करने की वजह से टैनिंग वगैरह आ गई है, डार्क हो चुके हैं. और सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमारा रंग जो है चिट्टा हो जाए, फेस का भी, हैंड्स एंड फीट्स का भी. और हमारे हैंड्स एंड फीट्स जो है ना हमारे फेस की तरह ही मतलब कि उनका कॉम्प्लेक्शन नजर आए. तो अगर ऐसे ही आप भी चाहते हैं

सुपरवाइज क्रीम प्रोडक्ट्स और सुपरवाइज ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, ठीक है. सुपरवाइज ब्यूटी क्रीम लेने के बाद आप लोगों ने कोई भी ब्यूटी क्रीम लेनी है, सुपरवाइज की कोई भी ब्यूटी क्रीम लेने के बाद, चाहे वो टर्मेरिक हो, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम हो, राइस ब्यूटी क्रीम हो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगती है वो आप लोगों ने लेनी है. और साथ में सुपर वाइट वालों की पेट्रोलियम जली लेनी है, ठीक है. ये दोनों वेरियंट्स आप लोगों ने लेनी है. और लेने के बाद जो क्रीम है ना, उसकी क्वांटिटी के बराबर ही आप लोगों ने पेट्रोलियम जली की जो क्वांटिटी है वो लेनी है. और लेने के बाद दोनों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है. इतना मिक्स करना है कि दोनों चीजें आपस में यकजा हो जाए. और जब दोनों चीजें आपस में यकजा हो जाएंगी तो आप इनको स्टोर करके रख लें, स्टोर करके रख लेंगे. एंड फिर इसको जो है रात को सोने से पहले अपने हैंड्स एंड फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके, साफ सुथरा करके आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद सो जाना है. सोने के बाद सुबह उठ के फिर से फेस वॉश करना है. सेम अपने फेस को भी इसी तरीके से वॉश करना है, हैंड्स एंड फेस को भी इसी ही वॉश करना है. तो डेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.

0: अब आपको पता चल चुका होगा कि कैसे हैंड्स एंड फीट फार्मूला तैयार होता है एक बेहतरीन किस्म का, क्योंकि सुपर वाइट वाले अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए तैयार करते हैं सुपर वाइट की जो है प्रोडक्ट। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी आज का टंग ट्विस्टर। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी, मैं शो वही लोग कॉल करें जो टंग ट्विस्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? SRH टंग ट्विस्टर सुना है?
1: तो सुना है लेकिन बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा है।
0: बोलने में अजीब सा लग रहा है, सही से बोलेंगे तो नहीं लगेगा ना?
1: नहीं तो लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है, चलें फिर मुझे ये बताएं कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं?
1: बस यही बात है, कभी हर्ष के कभी पर्स पे कभी निकल कभी उनके दर कभी दर पर दर। अब आप ही बताएं यहाँ पर आए या पहले वाले उस पे रहे?
0: पहले वाले उस पे, किस पे?
1: पहले भी एक प्रोग्राम होता था आपका।
0: बिल्कुल, और वो आपने अब तक तो मतलब यूज कर रहे हैं अब तक वो वाले भी?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा अब आप ये भी यूज करके देखें, जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप पहले यूज कर रहे हैं आप वही वाला लें। आप इसकी इसके जो है फेस वॉशेस भी यूज कर सकते हैं, आप इसकी पेट्रोलियम जली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेरियंट से अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद जब आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी तो आप बाकी सारे प्रोडक्ट खुद ही यूज करेंगे, है ना?
1: ठीक है,
0: ऐसा ही है, ठीक है। और कुछ कहेंगे अच्छा सा?
1: अच्छा साहब बस यही है कि आपके प्रोग्राम में कंपेयरिंग है ना कुछ खुल के सामने आई है, मतलब अच्छे तरीके से कर रहे हो और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छे चलाते हो।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। और टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी ये कहना है। एक और कॉलर लेंगे और मेरे ख्याल से हम गाना

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: It's time to commercial break.
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
4: अरे नहीं, खुश और बीरोनो की स्किन और इमेज लाइट था
5: डैमेज ए डल स्किन के कयो
4: आउट पर यू किए तो के खपे
5: सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चार रंग जो खूबियों ए कोजी कैसे फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जिल्द नमी के लॉक करे ए चार रंग जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कर ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम निहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
2: अगर खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा आई एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खा रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स एक्नी आई स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग आई दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक आई निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
6: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
7: सिंध का शहर खास
6: मीरपुर खास
8: अवां चायो था त अवां जो पैगाम बियन ताई पहुंचे अवां चायो था त अवां जी प्रोडक्ट जी मशहूरी थिए तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास एफ
6: की सरजमीन
7: सिंध का शहर
6: आमों की सरजमीन
7: सिंध का शहर खास
6: मीरपुर खास
8: अवां चायो था त अवां जो पैगाम बियन ताई पहुंचे अवां चायो था त अवां जी प्रोडक्ट जी मशहूरी थिए तपोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास एफएम 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंध जीए मीरपुर खास एफएम 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास एफएम 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 0333-3722-071
6: मीरपुर खास की आवाज.
9: Yeah, I'm a jatter.

0: ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
1: ਹਾਂ,
0: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ?
1: ਚੁੱਪ,
0: ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ,
2: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो, पेश आहे आर्श क्रीम हेयर कलर। पहंजे पसंदीदा रंग सा पहंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐं वधिक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी, हर लम्हे पहंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो। आर्श क्रीम हेयर कलर सा पहंजे शख्सियत में आयो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताजगी। अॼु ई पहंजे वेझे स्टोर तां आर्श क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजे खूबसूरती
3: खबर भी लाए, हंसी भी लाए, हर दुख सुख में साथ।
2: सिंध की आवाज।

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसाया आपको मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है. जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स और वो तमाम तो लोग जो कि जिनको नहीं मिल रही है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स तो वो हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करेंगे. हेल्पलाइन नंबर है जी 03147544426 सखर और लाड़काना वालों के लिए. ठीक है तो आप लोग इस पे एटलीस्ट कॉल करेंगे. ठीक है तो कॉल जरूर कीजिएगा. प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी मालूम चाहिए हो आपको तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पे आपको मिलेगी एंड आप शो का फीडबैक भी इस हेल्पलाइन नंबर पे दे सकते हैं. इसके अलावा जो हैदराबाद वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर है वो है 03702568321. ठीक है ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है जिनको आप लोग डायल कर सकते हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे नहीं मिलते हैं अवेलेबल नहीं है वहाँ वहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे एंड देन आपको मिल जाएंगे. सो सुपर वाइट के फॉर्मूलाज तैयार करने के लिए आप लोगों को चाहिए सुपर वाइट के ब्यूटी क्रीम्स. सुपर वाइट का एक और फॉर्मूला जो कि आप लोग तैयार कर सकते हैं. सो आप लोगों ने लेनी है एक अगर सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल क्रीम एंड देन उसके साथ आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट एंटी एक्ने क्रीम एंड उसके साथ लेना है सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. ठीक है आप लोग इन तीनों चीजों को जो है एक जार में ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे देन आप इसको इतना मिक्स करें कि ये आप मतलब कि एक जान हो जाए एंड देन आपने इनको स्टोर करना है. स्टोर करने के बाद रख लेना है. स्टोर करके रात को सोने से पहले आप इसको अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले फेस को वॉश करेंगे सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद ये फॉर्मूला अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड कुछ ही दिन में पहले ही 3 दिन में वाजे फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा. ठीक है स्किन डल है स्किन डार्क है स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल स्किन के ऊपर जो ऑयल आ जाता है अगर आप बाहर जाते हैं पोल्यूशन डस्ट की वजह से ऑयल फ्री स्किन नहीं रह पाती आप लोगों की. ऑयल बहुत ज्यादा आता है स्किन के ऊपर तो स्किन से ऑयल को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए आप लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को. और अगर फेस के ऊपर एक्ने है एक्ने को खत्म करेगा पिगमेंटेशन को खत्म करेगा आपके डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा. सबसे बड़ी बात फेयरनेस ब्राइटन अप स्किन होगी और आप देखेंगे पहले ही 3 दिन में इससे वाजे फर्क आपको मिलेंगे नजर आएंगे. ठीक है साथ कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे जी एंड कमेंट्स को हम एंटरटेन करेंगे एक गाने के साथ और वो गाना मुझे अभी अभी नजर आया था एंड मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझे दोबारा से नजर आ जाए और फिर उसको हम प्ले करें. ओके इस गाने के साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस को इंक्लूड करेंगे. तो जी कमेंट किया है नियाज मोहम्मद भट्टी ने कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मटियावी से कॉल मिला मिलाकर आंखें दुख रही हैं. इस्माइल किशोर कह रहे हैं कॉल मिला मिलाकर आंखें दुख रही हैं. आगे है गुरूर वाला इमोजी. गुरूर नहीं करना चाहिए बहुत बुरी बात है. मगरूरी इंसान को ले डूबती है वेरी बैड. और इसी के बाद उन्होंने कमेंट किया है ओके सिस टी सी बाय गुस्सा अच्छा अच्छा. इस्माइल किशोर कहते हैं कि अरे इस तोते की चोंच पहले भी टूट चुकी है सही से नहीं टूटी थी दोबारा तोड़ेंगे. ठीक है हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं शो नाइस है. वफा मुमताज खोसू हमें सुन रहे हैं. सैयद भनी बख्श हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं.

0: अच्छा कॉलर है लाइन पे मेरे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
1: मोरो से।
0: मोरो से पहली दफा कॉल कर रहे?
1: जी वाजी जी, प्रोग्राम लग गई थी लेकिन आपने अटेंड नहीं की।
0: चले अब लग गई है। वेलकम टू द शो। और मुझे बताएं प्रोग्राम कब से सुन रहे हैं
1: आप? पहली मरतबा सुन रहा हूँ लेकिन ये शो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: थैंक यू सो मच। और ये प्रोग्राम किसके तामुन से है ये सुना आपने?
1: नहीं अभी बाजी पता।
0: चले आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता भी देती
1: हूँ, नुसरत फतेह अली का सुनाएगा।
0: मैं बिल्कुल नुसरत फतेह अली का अभी हमने प्ले किया था और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्ले किया है। चले मैं फिर भी लगा दूंगी, मुझे बताएं और कुछ कहेंगे।
1: मेहरबानी बाजी आपकी, बात प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम।
0: थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश। और

0: डिलीवरी, नए सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं आगे और प्ले करते हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग. और वो जो एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो हम प्ले करेंगे और आगे जाएंगे.
1: जिससे
0: गाना है जो कि मैंने प्ले करना है एंड दिस सॉन्ग इज बाय दोनाली नबील शौकत. जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स.

जी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं आगे और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स मैसेजेस की तरफ आ रहे हैं जी. और मैसेजेस आप लोगों के बहुत सारे हैं मेरे पास. सो मैसेज हमें कर दिया है जी गोट गुल हसन शर से. कौन है ये गोट गुल हसन शर से हैं जी? हसन शर हैदरबख शर, सॉरी हैदरबख शर. रुकजाए आप आगे है मिसिंग पार्ट. अच्छा इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम दारावान से डॉक्टर वाहिद बख्श, कटोहर बलोच एंड मोहम्मद. थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो. बोरो से मंठार अली चौहान हमें सुन रहे हैं और सॉन्ग सुनना चाहते हैं शाहिद अली बाबर का डेडिकेट अली गोहर. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान विंद से गाजी खान विंद हमारे साथ मौजूद हैं. कहते हैं कि फैजान अली विंद, रिजवान अली विंद, शहजाद अली विंद, छोटी कौनैन जहरा आपका शो सुने सुन रही हैं. आप कंपेयरिंग आपकी कंपेयरिंग आपका बोलने का अंदाज लाजवाब है. फायजा अली का सॉन्ग सुना दें. अच्छा मोहम्मद तैयब थेबो से हबीबुल्ला थेबो हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा जी अभी तक के ये कुछ मैसेज

सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम भी बहुत लिमिटेड है और तकरीबन खत्म हो चुका है जी. एंड इसी के साथ हम फाइनली लेंगे आपसे इजाजत, और इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचाट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो और सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, ख्वाब पूरे करने के लिए जागना इससे ज्यादा जरूरी होता है. Love simple but think high. So this is me, RJ Rukhsar, signed out. Take care, goodbye. Ba amani khuda, Allah Hafiz.

0: अपेक्स कमेटी जो पहिरियों इजलास अॼु थी रहियो आहे। इजलास में शिरकत लाइ वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी पेशावर पहुची वियो। गवर्नर ऐं ॿियनि सां अलॻि मुलाक़ातूं बि कंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम जी गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ सां मुलाक़ात। केपीअ जे सूरत हाल ते तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं वयूं।
1: केपी में एमरजेंसी लगाने वारो फैसलो आसान न हो, पर हुकूमत वट बियो को ऑप्शन भी न हो। माजी में भी धरणनि ज़रिए मुल्क मैशियत के नुकसान पहुंचायो वियो। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त दहशतगर्दी खिलाफ़ जंग में हर सूबे के पंहिंजो किरदार अदा करणो आहे।
0: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर ऐं सलमान अकरम, राजा जे अपोज़िशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात। केपीअ में एमरजेंसी गवर्नर राजबाद सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ आला अदलिया सां राब्तो करण ते मुशावरत।
1: सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई जा 8 अॻवान हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि। केपी के पुलिस मूजिबि सुहेल आफरीदी, केपी के असेंबली जो स्पीकर सलीम सवाती, जुनेद अकबर ऐं ॿिया पुलिस जी हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि। पुलिस अलर्ट आहे, कंहिंखे बि कानून हथ में खणण न ॾींदी।
0: पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां दहशतगर्दनि जे सहूलतकारी ख़तम करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजे सरज़मीन जो इस्तेमालु रोके। ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त न कया वेंदा।
1: सऊदी अरब जे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमिलो, पाकिस्तानी शहरी शहीद, ॼाणा ॼाणा ज़ख़्मी। हुसी मलेशिया जे हमलनि सबबि शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअतल। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी जे शहीद थियण जी तसदीक करे छॾी। गुज़िरियल ॾींहं शाह खालिद एयरपोर्ट ते हमले में अमेरिका, सऊदी अरब, बंगलादेश, उर्दन, मिस्र ऐं फलस्तीन जा 12 शहरी मारिजी विया हुआ। 309 ज़ख़्मी थिया हुआ।
0: आबनाय रम्स ते अमरीका ऐं ईरान में 1.5 लाख बरक़रार कतरी साल सी बि अघु वराई करे न सघी। आबनाय रम्स में तेल बरदार ॿेड़नि ते हमला जारी। अमरीका बि तहरान जे बहिरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करे छॾी। ईरान 7 शर्तनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीका 7 शर्तनि मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। वाशिंगटन जो मजमूई जवाब तहरान लाइ नाकाफ़ी आहे।

0: एपी के में सिक्योरिटी फोर्सेज जो खारजी दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई जारी है। बनून में फोर्सेज ऑपरेशन एक खारजी दहशतगर्द मारजी वो सिक्योरिटी जरिए मौजूद बनून में कुछ इतला थे दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई कई वही दहशतगर्द की चुरपुर से भी नजर आए।
1: बिरयालो के कच्चे में माओ ए धीव कतल फेज मोहम्मद बिंडो थाने के हद गोठ बुरड़ा नारे जो में हथियार बदन सनम जाल एतबार नारे जो संदस धीर सलमा के कतल कयो। पुलिस जो चवण है तो मकतूला सनम नारे जो ते संदस मुड़स एतबार नारे के कतल जो इल्जाम हो। वाके बाद माँ धी टिन साल गुम हुई गुजर रात भा वट आयु तो खेन कतल कयो।
0: दोदापुर वेझो मोहम्मदपुर वे इलाके में जखानी बिरादरी के बिन धुरी में हलंदड़ पुराने तकरार था हथियारबंदन फायरिंग करे एक जने के कतल कर छो। गोट गुलाम हुसैन जखानी भरसा हथियारबंदन हमलो करे नौजवान शामिर जखानी के कतल कर वाके बाद धुरी में छिपटाण तेज थी वही।

0: सिंध के मुख्तलिफ शहरन में पेटियल पारा मुतालबनी मंडताला एहतजाज दादू भान सैदाबाद घोड़ाबारी में स्कूलन में टोकन हड़ताल बाद रैलियो कड़ी वयू सर्विस स्ट्रक्चर मुकररी रेगुलर करे वर्णवार मसलन के हल कयो वञे बायोमेट्रिक बदलन जा अख़्तियार ज़िले सतह ते ॾियण जो मुतालबो
1: सेवण में मंछर ढंढ जो पाणी नेकार न थियण ख़िलाफ़ आबादगारनि रोडनि ते निकिरी आया सेवण जाम छोरो नस हाईवे ते आबादगारनि धरणो हयो आबादगारनि जो चवणु आहे त आपाशी अमले अलवाह जो दर बंदि करे छॾियो आहे जंहिं सबबु ज़मीनूं ज़हरीले पाणी हेठि अची वियूं आहिनि ऐं पाणी आबादीअ में बि दाख़िल थी वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid और
0: आप सुन रहे थे GAFM, आप सुन रहे थे GAFM, आप सुन रहे थे GAFM Network पर KTN News.
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid और जदीद formulation के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के natural minerals, जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: सिंधुड़ी आमों की सरजमीन,
3: सिंध का शहर खास,
2: मीरपुर खास,
3: इसकी जिंदगी में घुली है
2: मोहब्बत की मिठास,
3: फूलों फलों की खुशबुओं से

हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें होने वाली है और ढेर सारी बातों में जाहिर सी बातें आप लोगों के साथ फन करेंगी, आप लोगों को मजे मजे के गाने सुनाएंगे, आप लोगों के मैसेजेस होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगी जनाब, वो भी रज के। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम से सुनाई होगा। तो बिल्कुल आओगे सिद्रा ही जनाब, आप लोगों के साथ साथ मेरे साथ कौन है मुझे बताइए और अपने होने का एहसास दिलाइए। आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए, इसी के साथ साथ अपने हाल चाल भी बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंतकेफ हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मोर के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का। और यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाने का काम करेगी भाई साहब ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल लाती हूँ। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम हम आप लोगों के साथ सुन लेते हैं जो कि ज़ेन और ज़ुहेब की आवाज में होने वाला है। आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए हैं जनाब। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं तो मुझे जल्दी से बताइए कि आप कौन सी स्टेज पर इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं। मुझे बताया करें ताकि भाई मुझे सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे जो लिसनर्स हैं ना वो माशाल्लाह से इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर वो इस्तेमाल करने वाले हैं। उनके अलावा जेके भी मानो सा बुधन पया सबने की चौथा भली करी आया। उनका अलावा जेको अज जे प्रोग्राम जो टॉपिक थियण वालों है मुझे तरफ भी अची वेठूँ था। सो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने बहुत सारे आप लोगों से जनरल नॉलेज के सवाल पूछ लिए, बहुत सारी पहेलियां पूछ ली, लेकिन हम जरा अपने वाले स्टाइल से हट चुके थे तो हमारा वाला जो स्टाइल है ना उसके तरफ जरा हम मूव करते हैं। हमारा जो स्टाइल है सवाल पूछने का वो जरा आज आप लोगों से सवाल पूछते हैं। तो आज मेरा सवाल जो आप लोगों से होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं, ऐसा तो हम सब लोग कहते ना कि भाई दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन ये तो पता है कि दीवारों का मुंह नहीं होता, दीवारें बोल नहीं पाती, सुन भले ले कोई मसला नहीं लेकिन वो बोलती तो नहीं है ना। इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं और ये मसला होता है कि भाई कह देते हैं कि भाई आस्ते गाला है दीवारों के भी कान होते हैं। आज मेरा सवाल आप लोगों से ये होगा कि अगर घर की दीवारें बोलने लगे, हाँ जी ऐसा कोई सीन हो जाए कि आपके घर की दीवारें बोलने लगे तो मुझे बताएं कि आपके घर का माहौल कैसा होगा। फिर आपने जो ये चुप चुप के लोगों के बारे में बातें करी हैं, दीवारें बोलने लगेंगी तो जाहिर सी बात है सोचो कितने फसाद होते, तो आप मुझे बताएं कि आपके घर का फिर माहौल कैसा होने वाला था। उनके अलावा अगर तहसने प्रोग्राम में शामिल आए हो बुधो पया पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर से यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं तो जनाब अपनी खामोशियों को तोड़ लीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। कैसे बनेंगे बताते हैं ना, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। उनका अलावा अगर तहसंगे फेसबुक के बुधन चाहिए था तो जी लाड़काना FM 88.8 असांजो पेज आहे जनाब फेसबुक जो, ऐं जॾहिं तव्हां सर्च कंदा जी लाड़काना FM 88.8 त तव्हांखे असांजो पेज आराम सां मिली वेंदो। पेज ते अचो बाबा, पेज ते तव्हांखे असांजी प्रोग्राम जी न लाइव पोस्ट मिली वेंदी जंहिंखे तव्हां लाइक कंदा, कॉमेंट कंदा ऐं शेयर करे छॾींदा। पोस्ट खे लाइक, कॉमेंट ऐं शेयर इहे टई चीज़ूं कंदा कयो, हिकिड़ी बि अगरि हिन मां चीज तव्हां स्किप कई न वो कुटकी ॾींदीमांव। पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और सबको बताइए जनाब कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है तो छा चुकी है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये कमाल हो चुका है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं या फिर ऐसा वाला सीन है कि भाई आप लोगों की स्किन खराब है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन टाइप है, या आप ऐसा वाला सीन है कि कोई भी प्रोडक्ट जल्दी में लगा नहीं पाते, ट्रस्ट नहीं हो पाता आप लोगों से कि भाई आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लगाए, बहुत सारे धोखे खा लिए हैं, लेकिन ऐसा है कि अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये प्रॉपर इस तरह से तैयार रखी गई है कि आपकी हर स्किन के ऊपर ये फिट हो जाएगी। क्योंकि सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि ऐसे आपकी स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ये फार्मूला ईजाद किया है, तो अब आपकी बारी है कि आप इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला भी है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई फेशियल कराया हो। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो आप लोगों को बतानी है मैंने, लेकिन ये वाली बात भी है जो कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल

डीज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे हैं, नहीं मिल रहे तो आपको नंबर्स बता रही हूँ, उनके ऊपर रابطہ कीजिए और जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही ॿई नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से दुनिया जे कहिड़े ही बि कोने में मौजूदु आहे बाबा तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए

हुसैन मना कहते के बाद जी चलें जी, आपकी ये थोड़ी सी शिकायत है इसको जरा हम दूर करवा देंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और ये मुसद्दिक अली लगारी हमारे साथ है। मुसद्दिक अली लगारी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप सिद्रा हो या कोई और हो बताएं, क्योंकि आजकल एआई का दौर चल रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं सिद्रा ही हूँ। ये वैसे सही बात है, आगे जाकर आपको हमारे भी डुप्लीकेट्स नजर आएंगे, क्योंकि वो हमारी ही तरह बैठकर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। वैसे ये बात तो आजकल हमें देखने को मिल रही है कि अगर आप किसी की भी आवाज दे दे, वॉइस दे दे, तो वो उसके सॉन्ग्स बना देते हैं या वीडियोस बन जाती हैं। तो आगे होने को तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल हो भी सकती है हमारी जगह पर भी, क्या पता एआई बैठा हो और आप लोगों से बातें कर रहा हो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान इंसान होता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जरा वायरल हुई थी, एक किसी मुल्क ने जो है ना वो एआई का रोबोट बना लिया था। वो खातून थी बिल्कुल, मतलब जैसे औरतें होती हैं, उसको बिल्कुल वैसे तैयार किया गया था, उसको टीवी का होस्ट बनाया गया था कि वो अब लोगों के इंटरव्यूज करेंगी। उनका ये मतलब एक्सपीरियंस था कि भाई हम देखेंगे ये वाकई वर्क करता है या नहीं। तो उन्होंने जैसे ही उसको ऑन एयर किया, वो किसी एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए बैठी रोबोट खातू, तो उसने थोड़ा मतलब बोला, वो इंग्लिश में बोली, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चाइनीज में स्टार्ट हो गई। तो ये है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन इंसान तो भाई इंसान होता है, अगर मशीनों के ऊपर आप कितना ही डिपेंड करें, लेकिन उसके लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ती है। तो ये वो वाली सीन है, आगे दौर ये बिल्कुल हो सकता है। आपने अच्छे से एआई के ऊपर जो है ना वो अपनी ग्रिप बना लेनी है कि आपको एआई आना चाहिए, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, वरना तो तमाम के खबर ना तकते अलाय चाचा थी सके थो।

0: आप क्या कर रहे हैं? आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के लिए बड़ी फायदेमंद है। सबसे पहली बात ये कि भाई इसके अंदर जितनी भी चीजें ऐड की गई है ना, वो सारी ऐसी हैं कि आपकी स्किन के लिए जरूरी है। और जब आप देखेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ, तो आप लोगों को ये चीज भी अंदाजा हो जाएगा कि ये आपके लिए बड़ा सेफ सा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द हजरात खवातीन ही लगा सकते हैं, और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और खूबसूरत हो जाइए। अरे भाई, जिनकी शादियां हो चुकी हैं तो क्या उनको हक नहीं है खूबसूरत रहने का? तमाम भी बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो, भले तमाजी शादी थी वही हो जाए। तमाम भी सोना थी सगो था, आई तमाम हमेशा सोना रही सगो था। और मुसद्दिक अली कहते हैं कि उस्ताद बुधायो। अच्छा उस्ताद का कहीं पूछो सबक हमदी का निंडर किथे इंदिया है? शागिर्द चयो स्कूल में, उस्ताद चयो वो किया, शागिर्द चयो छो त घर में अमल चवंदी आहे पढ़ो, ऐं स्कूल में उस्ताद चवंदो आहे वेह। अच्छा जोक था। हजार भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हैदर सोलंकी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। जी आप हमें सुन रहे हैं मीरपुर पठोरों से, ओके जी वेलकम हो गया। वैसे ये सिटी का नाम शायद मैं सही रीड नहीं करती हूँ। और हिदायतुल्लाह कहते हैं आवाज तो अच्छा, सॉन्ग की आवाज कम आ रही है। किशोर भाई कहते हैं कि अगर दीवारों गाला है ना, हाँ तो असान दिल में गाला गालियों कहो, हाँ जो इशारन में। मतलब बोलना ही बंद कर देते। अल्ताफ अली गादी बलूच लिखते हैं कि मुस्कान जी दीवारों को भी, दीवारों के भी कान होते हैं क्या? हाँ जी वो तो होते हैं, लेकिन आप फर्ज कर लीजिए अगर जबान भी आ गई तो फिर कैसा हो जाए। चाचा तमाम गाने जी फरमाइश किया, बिल्कुल हलाए बैठू था। आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। दर्दे दिल कहती है कि दुनिया जी ना ही परवाह, नजफ अली जो सॉन्ग लगाया जो डेडिकेट तुमको अलीजा और मेरी तरफ से, ओके जी डन हो गया। और आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं। तो वाह,
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network.
4: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Excel Cosmetics.
5: Wazir Mohsen Naqvi Sadarat Apex Committee jo pehre ijlas. केपीए जी सियासी है सिक्योरिटी सूरत हाल से गौर केपीए जे गवर्नर फैसल करीम कुंडिया चयो आए ता डेवलपमेंट ते कुर्बानी दई सके थी सिक्योरिटी ते नथा दई सकों वफाक जे इत्माद ते पूरो लाण ला 24 कलाक कम कदासी सूबे मा दहशतगर्दी के खत्म करे तरक्की डियारिंदासी घर वजीर मोहसिन नकवी चयो ता केपी हुकूमत के गजी कम जी दरख्वास्त कई पर हिनन न बुधी सूबे में पुलिस ए बियन जिलन के मजबूत बनाए वेंदो समूरो सूबो अमन आए आवाम दहशतगर्दी जो खात्मो चाहे तो
6: केपीके में एमरजेंसी लगाने वारो फैसलो आसान न हो पर हुकूमत वट बियो को ऑप्शन भी न हो माजिए में भी धरणन जरिए मुल्क मैशियत के नुकसान पहुंचाया वो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार है तो दहशतगर्दी खिलाफ जग में हर सूबे के पैंजो किरदार अदा करणो है।
5: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा जी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात केपीए में इमरजेंसी ए गवर्नर राज बादवारी सूरत हाल से गालियों वफाकी हुकूमत के कदम खिलाफ आला दिलिया से राबतो करने ते मुशावरत
6: सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई जा 8 अगवान हिफाजती तहवील में आहन केपीके पुलिस मूजिब सुहेल आफरीदी केपीके असेंबली जो स्पीकर सलीम सवाती दया पुलिस की हिफाजती तहवील में आहन पुलिस अलर्ट आहे कें के भी कानून हथ में खणन न दींदी।
5: पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का दहशतगर्दन के सहूलतकारी खत्म करने जो मुतालबो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब करते नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का रुगो एक ही मुतालबो है दहशतगर्द की सरपरस्ती मदद बंद कर पाकिस्तान खिलाफ पानी सरजमीन जो इस्तेमाल रोके खिते में अमन लाए पाकिस्तान की कोशिश के रद्द नथो कर सके पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमरा बर्दाश्त नथा कर सकजन अफगानिस्तान पाकिस्तान से कल वायदा पाड़े
6: सऊदी अरब के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हमलो पाकिस्तानी शहरी शहीद 11 जणा जख्मी हुसैन मलेशिया के हमलन सबब शाह खालिद और शाह फहद एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल थी वही सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी के शहीद थियण की तस्दीक कर छी गुजरियल ढी शाह खालिद एयरपोर्ट से हमले में अमेरिका सऊदी अरब बंग्लादेश उर्दन मिसर ए फलस्तीन जहा 12 शहरी मारजी वाया हुआ और 309 जख्मी थे हुआ
5: रमस्ते अमरीका ईरान में 1.5 लाख बरकरार कतरी साल सी बेग भराई कराए न सकी आबना रमस में तेल बरदार बेड़न ते हमला जारी अमरीका के 13 नाकाबंदी सख्त कर छा ईरान 7 शर्तन ते अमरीका के जवाब नाकाफी देण करार डे छो ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई है केपीए अमरीका 7 शर्तन में कुछ के कबूल किया है वाशिंगटन जो मजबूबी जवाब तोरण ला नाकाफी है
6: केपीके में सिक्योरिटी फोर्सिस जो खारजी दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई जारी है बनून में फोर्सिस जो ऑपरेशन एक खारजी दहशतगर्द मारजी वो सिक्योरिटी जरिए मौजूद बनून में गुजी इतला दे दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई कई वही दहशतगर्द के चौकुर से भी नजर है
5: सिंध हुकूमत एहतजाज जो हक खसे छो है वहदत सिंध रैली का अग कलम 174 लागू कयो वयो सखर में डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब कंदे एसयूपीए सदर सैयद जैन शाह चयो है त मकानी इदारन जरिए सूबाई हुकूमत के गैर फाल करण की कोशिश कई पई वे मुल्क में सियासी गैर यकीनी वाली सूरत हाल है कंखे भी खबर ना है सुभाणे छा थींदो वधीक सूबा ठाया वया त एनएफसी में 1991 वारो पानी वारो ठा पाण मुरादो खत्म थी वेंदो
6: रियालोई के कच्चे में माओ ए धी कतल फैज मोहम्मद बुडो थाने की हद गोठ बुढ़ा नारे जो में हथियारबंदन सनम जाल इतबार नारे जो संदस धी सलमा के कतल कयो पुलिस जो चवण है मकतूला सनम नारे जो ते संदस मुड़स इतबार के कतल जो इल्जाम हो वाके बाद माओ धी 3 साल का गुम हो गुजरियल रात भाव वट आयु त खेन कतल कयो वयो
5: दोदापुर जो मोहम्मदपुर

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बात है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। गोल्ड मोमन तैयब थेबू का हाबी बुला थेबू है। आरजे सिद्रा मुस्कान शो तमान जो वीरी वीरी नाइस आए सलाम तमाके वालेकुम अस्सलाम तमाके। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है दिल रुबा बेरिया रोड से, कहती अस्सलाम वालेकुम मेरी क्यूट से सिद्रा जान, कैसी हैं आप, शो आपका नाइस है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी आवाज अंदाज बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बड़े शौक से दिल लगाकर सुनती हूँ 8-9 साल से जब तक दिल करता है आपकी आवाज को। अच्छा और आपकी आवाज सुनती हूँ तो सुकून मिलता है दिल को, आपको सुन के एक सुनती हूँ ना एक भी शो मिस नहीं करती हूँ, मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा, नसीब अच्छी करेगा और बदनजर से बचाएगा आपको, आप मुझे याद करती हो बहुत खुशी होती है ऐसे याद करना मुझे। एंडी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ली है, अबू लेकर आया है, मैंने अपनी सिस को भाभी को सारी कजिन्स को बोला है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले लो आप सब, लव यू सिस सिद्रा जान। क्या बात है दिलरुबा, आपकी मोहब्बतें देकर कसमें मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, इतना प्यार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अरे भाई अल्लाह से ताकि खुश रखे मुझे सोनी दिलरुबा, आई तवां जो मोहब्बत हुआ बाबा ये लाकर मोहब्बत हमेशा कायम रहन, आई तवां के दिल सा चौथा भली करी आया, आई तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करी दिसो, आई तवां के बुधाय जो तो तवां के रिजल्ट्स के मिलाए दियो हाल वाल ता आबिद भाई बता मिठी आया ना डिस्काउंट्स में मिले या फिर चूनो लगाए जी। वैसे आबिद भाई बड़े अच्छे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आबिद भाई के हाथ से आप जितने भी बेरिया रोड वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आबिद भाई की शॉप से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, साथ में आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा वहां से। तो अगर आपको फेस वॉश के बारे में ये चीज है कि भाई हम कहां से मिलेगा, अब कहां से जाकर परचेज करें हम, तो आप आबिद भाई की शॉप पर चले जाइए, वहां से आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा, उनके यहाँ फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो दिलरुबा फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, ठीक है जाना। ओके जी, मोरो से मंठार अली दोबारा से आपने वही वाला मैसेज शेयर कर दिया है, आपको वेलकम कहते हैं, जवेरिया हमारा शो सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, जवेरिया हमें लाड़काना से सुनती है, प्यारी जवेरिया को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं, आप भी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं ये तो अच्छा हो गया। मकसूद मलहा हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहते आदाब आदाब डी स्किन ब्यूटी शो में मुझे मास्टर मंजूर का गाना सुनाना हाजिर साईं, बिना करी गाने जी फरमाइश मतलब थोड़ा कम ही माण्हू कंदा आहिनि, गाने जो फरमाइश घटि कंदा कयो बाबा। ये हमारे साथ कहते सिद्रा जी आदाब, दीवारें बोलती तो शायद तन्हाइयों का अजाब कुछ कम हो जाता, मोहम्मद शरीफ कुंभ खां असो प्रोग्राम बुधन पाया, यह गाल तवां वैसे सफा सही कई, जेके मानू तन्हा हुंदा हैं उनन जो पर यो मसलो जेको आ हल थी वने, हां तो उनन जिलाए दीवारू गाला ना तो उनन जिलाए एंटरटेनमेंट जो जरियो हो जना। प्यारा भाई तुम मोहब्बतू आए इंजॉय कर प्रोग्राम, आई जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कंदा रहो।

अच्छा ही गानो गदा भाई के डेडिकेट बने थो गदा भाई चयो मुखे कोई शादी वारो गानो बुधरायो शादी वेचारे जे थे कोन पई अगर शादी करण चाहिंदा आइन त कोई न कोई मसलो थिना न शादी जका न रुकजी वेंदी आहे सो अल्लाह कंदो तां जी शादी थी वेंदी पर उनखा पहिरी तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण शुरू कयो ही गानो तवा के डेडिकेट

फजली हमारे साथ है। फजली के दी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान। कैसी हो डियर जाना? मैं ठीक हूँ डियर जाना, तुम बताओ कैसी हो? कहते सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स को। ओके

सब खां पहिरीं ख़र्च जेको तव्हां करिणो आहे इहो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो बाबा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे मुनासिब पैसनि में मिली रही आहे ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो. उन्हनि खे चओ बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, उहा क्रीम ॾे जंहिंजे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे. इहा निशानी अथसि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके वीचारा पढ़ियल न आहिनि, अनपढ़ियल, जेके भाउ असांखे ॿुधनि पिया, भेनरूं असांखे ॿुधनि पियूं. उहे तव्हां पंहिंजे लाइ इहा निशानी यादि रखो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे. समुझो था, इहा निशानी आहे तव्हांजे लाइ, जीअं तव्हांखे कोई दुकानदार जेको आहे उहो बेवकूफ़ न बणाए सघे. ऐं तव्हां बसि वञो ऐं सही प्रोडक्ट परचेस करे अचो. अच्छा, चाचा कहते कि सिद्रा बेटा, इंसान भी अजीब है, कभी बहुत सी बातें करने को दिल करता है और कभी मुंह ही नहीं करता. जैसे आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ कहूँ, वैसे आपको कितने मैसेजेस करता हूँ, तंग करता हूँ, बट आज अजीब कैफियत है. होता है ऐसा, कभी कभी होता है. और ये वैसे आप कोशिश करें वो तमाम चीजें जो है ना अपने अंदर दिल में मत दबा के रखें, जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, जो आपके तकलीफ का बायस बने, लोग हो या चीजें हो या बातें हो, उनको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा स्पेस में रखा करें, सुकून में रहा करें. क्योंकि आपका मेंटल रिस्पांस जो होता है ना, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो ठीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए. सारी चीजों से ये चीज मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है. आबिद ब्रोही हमें सुन रहे हैं, हाय जी, गुड शो, आपका बहुत शुक्रिया. और उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं कि ज्यादा कमेंट्स करने का, अरे भाई ज्यादा कमेंट्स ऐसा है कि फिर दो तीन कमेंट्स कर दिया करें. रमेश ठाकुर हमें सुन रहे हैं सुल्तानाबाद से, ओके जी, आपको भी वेलकम हो गया. अबू हनीफ, आपने गाने की फरमाइश कर दी है और मुझे लगता है ये वाला आपका गाना होगा. ओके जी, बिल्कुल सुनेंगे. और जफर भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हाय जफर खती बाजी, फर्स्ट मैसेज है मेरा. जफर भाई आपको दिल से वेलकम कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और आपको भी मशवरा देंगे कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राई करके देखिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दी है. अगर नहीं भी मिल रही है तो नंबर्स बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर, उनके ऊपर राब्ता कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाए.

ओके जी, क्या बात है। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई जेकब आवाज से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से। ये थे लाजवाब कंपेयरिंग, लाजवाब प्रोग्राम। थैंक यू प्यारा भाई। जेकब आबाद में मिले थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाला वाल तो। सुमाटू गोपांग कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, अभी लाड़काना यूनिवर्सिटी में पेपर करके आया हूँ। आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम इन कंबर सिटी, वेरी नाइस वॉइस डियर, थैंक यू वेरी मच। आपने गाना भी लिख दिया है, गाना भी लगा देंगे और उनका अलावा। ओके गदा भाई, बढ़िया हो गया भाई, आप खुश रहा करें, ठीक है। और अलीगुल हमें सुन रहे हैं गोठ सोनवा खां, अलीगुल चांडियो, आकिब गुल चांडियो, गुलाम फरीद चांडियो, साईं तमा के बुद्धि रहा आयूं, थैंक यू वेरी मच। भात आंजो मोहब्बत हुआ तमा के चौदह भली करे आया। चाचा फेसवॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम आए, ये जी को सीरम हों ने डाडो तो आज स्किन जला फायदेमंद आए, ट्राई करें इस जो। अली दिना कश्मीर से हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम हो गया। तारिक भाई कहते हैं कि हमादुल्ला बिरोही आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं हैदराबाद से। ओके जी, हमादुल्ला बिरोही भाई को भी वेलकम कह देते। किशोर भाई लिखते हैं कि सोच रहा हूं उसे तोहफे में पायल दूं, जब वो चलेगी तो मेरा इश्क, हाँ जी मेरा इश्क गूंजेगा, क्या बात है। अच्छा हिदायतुल्ला, ये वाली बात थी। और नजर मोहम्मद भट्टी भाई में मटियारी से सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्ला कहते हैं कि शल्ला बचे लेकिन बचना मुश्किल है, क्योंकि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाता है ना, तो बचना मुश्किल है। सही बात है वैसे।

ओगरी ताही प्यारो गानो एंजॉय कयो गाने का फोरन बाद ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए वापसी जल्दी मोटी तमा दींदासी तमा करी ने मंजो एते बैठा जो ओ ही मनी ओ ही मोटू था सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी

नॉट बैड, गाना बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भूरल शर हमें सुन रहे हैं, कहते अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको कहते हैं खुश आमदीद। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे शुक्र है तुम आरजे हो, वरना ऐसे सॉन्ग दूसरे। हाँ ये बात है, बस तुम सबने जो ख्याल करो पड़ो है। किशोर भाई कहते हैं कि भूखे मर जाएंगे मेरी कब्र के कीड़े भी, कुछ इस तरह सिखाया है तेरी मोहब्बत ने मुझे। आई लीड़े, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आप ऐसा कीजिए, जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, उससे ये होगा कि आप खूबसूरत हो जाएंगे, फिर आप खुश भी हो जाएंगे, फिर आप खुश होंगे तो समझ लीजिए सब सेट है। और खूबसूरती को अगर आप मजीद निखारना चाहते हैं, खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा खूबसूरती ऐसा होता है ना कि खूबसूरती हर किसी को चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, अगर जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोगों के लिए ये वाला सीन है कि भाई आप सब लोगों को खूबसूरती चाहिए होती है। लेकिन खूबसूरती के मामले में अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं बताए जाते, तो सही वाला प्रोडक्ट अगर आपको नहीं मिलता, तो फिर आप ये सोचते हैं कि भाई सही वाले प्रोडक्ट तो होते ही नहीं है मार्केट में। ऐसा कोई सी नहीं है, सही वाला प्रोडक्ट अगर आपको बता दिया जाए और सही वाले रिजल्ट्स अगर आपको मिलते रहे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना कमाल का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतने अच्छे से आपके चेहरे पर वर्क करती है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं, तो आप लोगों को खुद ही एहसास होता है कि आप कितना कमाल का जो है ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए, मर्द हजरात खवातीन सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ये भी चीज जरा जहन से हटा लीजिए कि भाई हमारे चेहरे पर सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप लगाइए तो सही डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप सब लोगों के चेहरे पर सूट करने वाला प्रोडक्ट है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। क्या समझे फिर? अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाली समाधें बनना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर से जाइए और नाम लेकर तलब कीजिए। नंबर्स बाकी आपको बताते रहेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिनके ऊपर आपने रब्ता करना होता है। कॉल करके बस उन्हें ये कहना होता है कि भाई साहब फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा शाय हैं, या फिर आपको ये लगता है, अच्छा हाँ लड़कियां खास तौर पर ऐसा होता ना, कहती हैं कि भाई हम लड़कियां हैं, हम नंबर के ऊपर रब्ता नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पे आपके भाई हैं, आपकी अब्बा जान हैं, तो उनके नंबर्स के ऊपर से रब्ता कीजिए। उनको ही बोलिए कि भाई साहब या अब्बा जी आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, उनको बोलिए कि फला फला जगह पर जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, तो वो अवेलेबल करा देंगे। आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, उनको बताइए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कहां कहां पर जरूरत है। और इनका अलावा असाई टीम माशाल्लाह इलाही एक्टिव लगी पई है, तव्हांजी कॉलिंग जी इंतजार में आहे। जॾहिं तव्हां कॉल कंदा त तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते जल्दी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए छॾींदासीं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, इहे तव्हांजे चेहरे ते जेको आहे फेशियल वारो निखार आणे छॾींदा। छो त वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स आहिनि, इहे जॾहिं जंहिं बि प्रोडक्ट जे अंदर एड कया वेंदा आहिनि, त उन प्रोडक्ट जी जेका रिज़ल्ट आहे न, उहा 10 गुना वधी वेंदी आहे। जेके महांगा महांगा तव्हां फेशियल्स कराईंदा, उन्हनि जे अंदर बि बिल्कुलु वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स एड कया वेंदा आहिनि, तॾहिं तव्हांखे ॾाढा सुठा रिज़ल्ट मिलंदा। पर हाणे इन्हनि सीज़न खे थोरो साइड ते रखो, ऐं तव्हां घर वेठे मुनासिब पैसनि में डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ऐं सफ़ा वीआईपी थी वञो। अहिड़ा ॼण तव्हांखे महांगो फेशियल करायो, पर तव्हां इहो सिर्फ़ पाण करे सघो था, छो त तव्हां पाण डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमालु करण जे तरीक़ेकार बि बहुत ज़्यादा आसान है। आपने ऐसा करना है, सबसे पहले डी स्किन फेस वॉश जो है ना, उसे अपना फेस वॉश कर लेना है, रात के टाइम आपने इस्तेमालु करनी है। और अपना फेस वॉश करने के बाद अच्छे से चेहरे को सुखा लीजिए, क्लीन करने के बाद फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से लगाइए, ठीक है? और मसाज नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए, और इस तरह लगाइए कि क्रीम आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। फिर आप पूरी रात सो जाइए, सुकून की नींद कीजिए, सुबह उठकर दोबारा से फेस वॉश कीजिए। जब आप 2 रातें मुकम्मल ये प्रोसेस करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 रातें लगाइए, 2 रातों में आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और ऐसे रिजल्ट्स जो कि भाई बिल्कुल सेफ है आप सब लोगों के लिए। आपके लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

बात है, वैसे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो चुका है, नेटवर्क की वजह से जो है ना लोगों के हाँ शायद हमारी पोस्ट भी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप हमारी पोस्ट को शेयर मार दिया करें, ठीक है, और शेयर कर दिया करें, ऐसा ना हो कि आप कमेंट में शेयर का स्टिकर ही भेज दें। वैसे ये पोस्ट पर मेरे ये अच्छा होता है कि आप स्टिकर्स नहीं सेंड करते, क्योंकि जब स्टिकर्स वाला मसला हो जाता है ना, फिर आप लोगों के कॉमेंट्स ऊपर चले जाते। मेरी माशाल्लाह जो लिसनिंग है ना, बड़ी इंटेलिजेंट लोग है, तो आप अच्छा सा एक प्यारा सा कॉमेंट कर देते। बाकी तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी यूज कर रहे हैं। इस्तार अली शेख कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ स्टार, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में है। नजर मोहम्मद भट्टी भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है कि आप बात है? चाचा कहते हैं सैडी लास्ट लिंक, ओके चाचा। और अदो कहते हैं कि एआई म्यूजिक एड़ो ठाईंदो आ सफा मस्त, सफा आखिरी, सही था चो कहते हैं कि अदा अज नेट सही नथो हले, इन करे उबता सुबता कॉमेंट कयां वियो। खेड़ा खेड़ा कागल कोने का। और जी

हाणे दुनिया जी परवाह करण बि न घुर्जे. दुनिया जी जॾहिं तव्हां परवाह कंदा न, पंहिंजी ज़िंदगी जीअणी तव्हां छॾे ॾींदा. दुनिया जी परवाह न कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो. फहाद अली लाशारी बलोच हमारे साथ. वालेकुम अस्सलाम. जी जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई, खुश आमदीद. और मटियारी से खुदा बख्श खास केली भी हमारा शो सुन रहे हैं भाई साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं. गदा कहते हैं कि तू जो खेर ना है, शो जो तू डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथो लगाई. हाँ, उन्हें जो खेर ना है जैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथा लगाएं, बाकी उन्हें जो खेर आगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं. सो बाबा तां सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो. फहद भाई कहते हैं कि मैं भी आ गया हूँ आपके शो में. बहुत शुक्रिया भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है. लास्ट में OST आप सुनना चाहते हैं? मैं कोशिश करती हूँ आपका OST लगा देंगे. चाचा कहते हैं आरजे इतनी इंटेलिजेंट है. जी बिल्कुल, सोबत का असर तो होगा ही आप लोगों के ऊपर. वैसे आप अपने कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हैं?

आंजी ईएम बी को भला थींदो आ छा तां हेरो बुधाया ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में ता वठो कोन था ईएम बी को थींदो आ छा अरे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका ने तमा सबनी मानन जे लाया ई दाडी सेफ प्रोडक्ट आहे मेडिकेटेड फार्मूलो आहे तमा दिल खोले लगाए सगो था अखियो बोटे लगाए सगो था आई वन्यो हाणी पाजे करीबी जनरल स्टोर तां वठी चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मकसूद मला कहते फरमाइश बंद हां जी मां कोशिश कंदम त फरमाइशन वारा गाना थोड़ा घट हलायो आई उन खां अलावा फहाद भाई कहते हैं कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जो पास हो उसे संभाल के रखना क्योंकि खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता ये आपने बिल्कुल सही बात बोल दी

वैसे ये गानो मुखे वणंदो तो वला ओहो ए डोखडी दो थियण घुर्जे अला तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ये मौजूदी लाड़खाना से अस्सलाम वालेकुम सिदराबाद जी में मंसूर अली अक्रोश शरीफ से सलाम जोया राशिद शाह को अहमद मुगल का गाना सुना दी आपका शो रोज सुनते हैं शो वीआईपी हो रहा है सलाम सब सुनने वालों को ओके भाई आप और आपके जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है दोस्त उन सबको वेलकम कह दें आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं और साथ साथ हमारे साथ हैं जी सफदर अब्बास कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मित्रों शहर से देख रहा हूं सुपर अच्छा हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम कहते हैं कंखे दाद जी

वाह साईं वाह वाह जो भलो गानो बुधो से एकड़ो लास्ट में ट्रैक आए वो भी बुद्धी वठना सी मंजूर सखिराणी जी आवाज में आए बिल्कुल जी बिल्कुल और फहद भाई ता सबनी बुद्धदड़न के सलाम डई छड्या है ने सो वालेकुम अस्सलाम गदा के दे लास्ट में थकल गाना छो लगाईंदी आही ये मानन जो फरमाइश होंदी आन भला था है ना आज त लास्ट में सठा गाना हलाया है और मुसद्दिक कहते हैं सिस्टर वडी मेहरबानी बुधू पया आई चौथा अदी अवां मान डनो लख थोरा तो सिगरेट अरे भा तां जो मोहब्बत है तां प्रोग्राम में शामिल थे वो के लाइक सुठो लगंदो जदे तां प्यारा प्यारा मानो असने प्रोग्राम में मौजूद हुंदा हो आई वरी तां असा के दसिंदा तो बाजे सतां जो प्रोग्राम बुधू पया तां जी वजह से प्रोग्राम में रौनक हुंदी है किशोर भाई कहते हैं कि अदा तू शक्ल जो अलाए केड़ो आही पर दिल जो बादशाह आही मुके फखर इन गाल जो आहे त आ हन बादशाह जे दिल में जगह उठाई है इन गाल में कोई शक कोने को तो मुझे प्यारो भा जेको आ वो भलो मणु आए पान भी जेको पान भलो ना सबने के भलो समझंदो है जी मुखे वरी सब भला लगन आयन पर जड़ी असलियत देखारीनन पो खबर पंदी आ अरे बाप रे हम तो गलत थे चलो सुठो आयो भी वक्त ते हर के इसलिए तो वरी खबर भी पैची वेंदी आहे और तां सब जेको आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो था को न मुखे लाजमी बुधाना अच्छा कमेंट में ना तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखो एक एक मानो सही आ हनीफ तां जो मोहब्बत है तां प्रोग्राम बुधो पया

0: बिल्कुल सही समझे चाइना वाली को भी। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। और साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस वजह से परचेज नहीं कर पा रहे हैं कि आपके एरिया में नहीं मिल रही तवा जे गोठन में अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे, त तव्हां जल्दी असांजे के नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां प्रोग्राम जे अंदरि, उन्हनि ते राबितो करे वठंदा कयो। राबितो करण जी इहा तव्हांखे हिकिड़ी मतिलब जेको आहे न सुठी ॻाल्हि लॻंदी, त राबितो करण सां गॾो गॾु तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराया वेंदा ही प्रोडक्ट, चाहे उहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन जो फेस वॉश हुजे। सो अवेलेबल करायो ऐं पाण खे जनाब थोरो स्पेशल फील करायो ऐं तव्हां बि लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तव्हां बि सुहिणा थी वञो। अच्छा बाक़ी इहो आहे त गदा यूट्यूब छॾे ॾिनो आहे बाबा, मज़ो न हुयो अलाए छो। अच्छा मुसद्दिक़ कहते हैं कुछ अड़ा मानू हुंदा आहिनि जेके दिलन में घर करे वेंदा आहिनि, उहे बेहतरीन शख्सियत जा मालिक हुंदा आहिनि। बिल्कुल भाउ तव्हां सही था चओ, इंसान पंहिंजी इज़त जेको आहे न उहा पाण ठाहींदो आहे अॻिले इंसान जी नज़र में। बाक़ी त ॿियो तरबियत ते बि डिपेंड करे थो त कंहिं इंसान जी कहिड़ी तरबियत थियल आहे। उहो अचे ॿाहिरि माण्हुनि खे उहो ॾेखारींदो आहे त बाबा ॾिसो मुंहिंजी तरबियत केॾी भली थियल आहे। सो कोशिश कंदा कयो त पंहिंजी तरबियत जेका आहे न उहा सुठी रखो, चाहे तव्हां वालदेन आहियो या चाहे तव्हां जी पंहिंजी तरबियत हली रही आहे, त तव्हां पंहिंजी थोरो इन चीज़ ॾे बि ख़्यालु कंदा की त कुझु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके इंसान खे पंहिंजे अंदरि जेको आहे न उहे सही रखणु घुरिजनि। ऐं तव्हां सुठो सलूक कंदा कयो ऐं इहा उमेदु रख कंहिंजी
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: Aap sunenge

0: बरकरार कतरी साल से बेगबराई करे न सग्या आपने और उसमें तिल बरदार बेड़न ते हमला जारी अमेरिका भी तेरान जे बैरी नाकाबंदी वधी का सख्त करे छड़ी ईरान सत शतन ते अमेरिकी जाब के नाका भी करार नहीं छड़ियो ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई चयो आए ता अमेरिका सतन शतन मां कुछ के कबूल कयो आए वाशिंगटन जो मजमूई जवाब तेरान लाए नाकाफी आए
1: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो बेबिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: मीरपुर खास की हो तो आवाज भी मीरपुर खास की है सुनते रहो जी एफ एम 88 मीरपुर खास की आवाज
4: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
7: Super white!
8: पंजे शहर मीरपुर खास में डॉक्टर मुसर्रत अब्बासी MBBS FCPS मैदे ऐं जिगर जी बीमारियन जी माहिर मैदे जी जलन तेजाबियत या अल्सर गले में मानी जी रुकावट जिगर जी चर्बी कारी ऐं फिकी साई वात ऐं पेट मां रत जो अचण कब्ज बवासीर वजन जो वधी वञण अहिड़न तमाम बीमारियन वारे मरीजन जो मुआइनो ऐं इलाज कंदी आहे ओपीडी टाइम सूमर ऐं खमीस सुबुह जो 10 वगे खां मंझंद 2 वगे ताई अंगारो ऐं अरबा मंझंद 3 वगे खां शाम 6 वगे ताई एड्रेस रहमत मैदा वो जिगर केयर वेझो आगा खान लेबोरेटरी अली मेडिकेयर सेंटर पीएम कॉलोनी मीरपुर खास वधीक मालूमात लाइ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 03103844883
9: अखियुनि जे सभ खां वॾे इदारे जा मशहूर ऐं तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज कुरेशी ऐं सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात ख़ान सफ़ेद मोतीअ जो ऑपरेशन बज़रिया लेज़र फेको कारे पाणी जो इलाज ऐं ऑपरेशन परदनि जी बीमारियुनि जो इलाज ऐं अखियुनि जी ॿियुनि बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहिनि टाइम रोज़ाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं शाम 6 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं ऑपरेशन कया वेंदा एड्रेस
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream Munfarid aur Jadeed Formulation ke saath aapko gora banaye Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dinon mein
4: A product by Aksa Cosmetics Pakistan
5: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
7: Super white!
3: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बेरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जहमे आहिन चार रंजू खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐ चामरन जी खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट, उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मंत्री ऐं वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि एपेक्स कमेटीअ जो पहिरियों इजलास केपीअ जे सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरताल ते ग़ौर। केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो आहे त डेवलपमेंट ते क़ुर्बानी ॾेई सघिजे थी, सिक्योरिटीअ ते नथा ॾेई सघूं। वफ़ाक़ जे इतमाद ते पूरो लहण लाइ 24 कलाक कमु कंदासीं। सूबे मां दहशतगर्दीअ खे ख़तमु करे तरक़ी ॾियारींदासीं। घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त केपी हुकूमत खे गॾिजी कमु करण जी दरख़्वास्त कई पर हिननि न ॿुधी। सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो। समूरो सूबो पुरअमुन आहे। अवाम दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो चाहे थो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोज़िशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात। केपीअ में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज बाद वारी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत जे क़दमनि ख़िलाफ़ु आला अदलिया सां राब्तो करण ते मुशावरत। बैरिस्टर गौहर सुभाणे पिशावर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदो। सोहेल आफरीदीअ समेत पीटीआई जा 8 अॻवाण हिफ़ाज़ती तवील में आहिनि। केपी पुलिस मूजिब सोहेल आफरीदी, केपी असेंबलीअ जो स्पीकर सलीम सवाती, जुनेद अकबर ऐं ॿिया पुलिस जे हिफ़ाज़ती तवील में आहिनि। पुलिस अलर्ट आहे, कंहिंखे बि कानून हथ में खणणु न ॾींदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि दानिश आईटी पार्क बाबति इजलास। दानिश आईटी पार्क इस्लामाबाद खे आलमी मयार जो मर्कज़ बणाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त दानिश आईटी पार्क मनसूबे जो थर्ड पार्टी ऑडिट बि करायो वियो। नौजवाननि जे जदीद तरबियत ऐं कोर्सिस लाइ बि घुरबल क़दम खया वञनि। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां दहशतगर्दनि जे सहूलतकारी ख़तमु करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे। पाकिस्तान ख़िलाफ़ु पंहिंजे सरज़मीन जो इस्तेमालु रोके। ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वाइदा पाड़े। सऊदी अरब जे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमिलो। पाकिस्तानी शहरी शहीद, 11 ॼणा ज़ख़्मी। हुसी मलेशिया जे हमलनि सबबि शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअतल। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी जे शहीद थियण जी तसदीक करे छॾी। गुज़िरियल ॾींहुं शाह खालिद एयरपोर्ट ते हमले में अमरीका, सऊदी अरब, बंगलादेश, उर्दन, मिस्र ऐं फलस्तीन जा 12 शहरी मारिजी विया ऐं 309 ॼणा ज़ख़्मी थिया। आबनाह रुम्स ते अमरीका ऐं ईरान में 1.5 लाख बरक़रार। कतरी साल से बि अघु भराई न करे सघी। आबनाह रुम्स में तेल बरदार ॿेड़नि ते हमला जारी। अमरीका बि तहरान जे बहिरी नाकाबंदी वधीक सख़्तु करे छॾी। ईरान 7 शर्तनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाईअ चयो आहे त अमरीका 7 शर्तनि मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। वॉशिंगटन जो मजमूई जवाब तरण लाइ नाकाफ़ी आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोटिया में पाक फ़ौज जो तरबियती जहाज़ किरी तबाह। जहाज़ में सवार ॿई पायलट शहीद। ISPR मूजिब मुश्ताक तरबियती जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में पायलट मेजर हसनैन शहज़ाद, कैप्टन अब्दुल समद शहादत माणी। तरबियती जहाज़ फनी ख़राबीअ सबबि किरी तबाह थियो। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह पारां वफ़द सां गॾु चीन में 3 गोर्ज डैम जो दौरो। वॾे वज़ीर खे डैम में पन बिजली, घर जे पैदावार, सप्लाई ऐं आबी ज़ख़ीरे ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह चयो त सिंध में मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि घणो मुतासिर थी रहियो आहे। पाणीअ जो बहितर इस्तेमालु सिंध जे स्ट्रेटजिक तरजीह आहे। सिंधु दरिया मां वॾे मिक़दार में पाणी मिली सघे थो पर ज़ख़ीरे जी सलाहियत महदूद आहे। ज़रई ऐं शहरी घुर्जनि लाइ मुस्तक़बिल में पाणी ज़ख़ीरे जी सलाहियत वधाइण अटर आहे। सिंध सरकार चीनी आबी इंतिज़ामिया मॉडल जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदी। वॾे वज़ीर जे वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम, मेमण जाम खान छोरो ऐं ॿिया शामिल आहिनि। केपीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु कार्रवायूं जारी। बनून में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिकु खारजी दहशतगर्द मारिजी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बनून में ॻुझे इतलाउ ते दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वई। दहशतगर्दनि जी चुरपुर ते बि नज़र आहे।
सिंध हुकूमत एहतजाज जो हक खसे छो वाद ते सिंध रैली का अग कलम 144 लागू कयो वयो सखर में डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब कंदे एसयूपी के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह चयो आए त मकानी इदारन जरिए सूबाई हुकूमतन के गैर फाल करण जी कोशिश कई पई वे मुल्क में सियासी गैर यकीनी वाली सूरत हाल आए कंखे भी खबर ना तो सुबाने सूबा ठाया वा तो एनएफसी 1991 वो पानी वो ठा पान मुराद खत्म थी वो पिरियालो के कचे में माओ ए धीव कतल फेज मोहम्मद बिंडो थाने के हद गोठ बुरड़ा नारे जो में हथियार बदन सनम जाल इतबार नारे जो संदस धीव सलमा के कतल कयो पुलिस जो चवणा है तो मकतूला सनम नारे जो ते संदस मुड़स इतबार के कतल जो इल्ज़ाम हो वाके बाद माँ धीव 3 साल का गुम हुई गुजर रात भा वट आयु तो खेन कतल कयो दोदापुर वेझो मोहम्मदपुर वे इलाके में जखरानी बिरादरी के बिन धुरन में हलदड़ पुराने तकरार त हथियारबंदन फायरिंग कर एक जने के कतल कर छो गोठ गुलाम हुसैन जखरानी भरसा हथियारबंदन हमलो कर नौजवान शमीर जखरानी के कतल कर वाके बाद धुरन में शिकताण तेज थी वही सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पेटियल पारा मुतालबंज मंजताला एहतजाज चूहड़ जमाली खेरपुर नाथन शाह मटियारी शहदाद कोट कंबर जेकंबा टंडो आदम दादू भान सैदाबाद खिपरो सजावल पनवा अकल इस्लाम कोट नौशरो फिरोज में रैलियों कड़ी वही सर्विस स्ट्रक्चर ए बायोमेट्रिक बदलन जहा अख्तियार जिले सतह से दियण जो मुतालबो नवाब शाह के सेक्शन थाने के माल खाने में अदालती हुकुम से रखल 52 तोला सोन मुबैना तौर गुम सोन गुम थियण जो एसएसपी शहीद बेनजीराबाद नोटिस वरतो वाके जो केस सेक्शन थाने के अगवाण के बिन मुछिन खिलाफ लाल मोहम्मद रेंदो ए फहीम उन समेत फरहान अली सिपाही सदाम से दाखिल किया वो पुलिस जरिए मूजिब चैनी पुलिस अहलकार मुबैना तौर गिरफ्तार कर नामालूम हंध रखो वो है जांच लाए एसएसपी कमेटी जोड़े छी अहमदपुर भरसा मुबैना पुलिस मुकाबले दौरान हथियारबंदन की फायरिंग में नींगर मार वो पुलिस मूजिब गोठ मलाना जावरी में पुलिस ए हथियारबंदन विच में मुकाबलो थो हथियारबंदन की घर से फायरिंग सबब 3 वरियन जो जुबेर मलाना मार वो मामले की जांच कर रहा आय कंदकोट में आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन जो एहतजाज मुलाजमन एक्सिन मुख्तियारन सारी 5000 नंढन मुलाजम के सजाओं दई 3 लाइनमैन जो नौकरियों खत्म कई जैसी तई शफाफ जांच कर एक्सिन खिलाफ कार्रवाई न कई वी तेसी तई एहतजाज जारी रह लाड़काने में सेफको की मुबैना नाली सबब नींगर की हयाती खसे वरती असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भरसा बिजली की लटकियल तार में करंट लगन सबब 8 वरियन जो सोरा मीरानी फोत वारसन जो सेफको ते इल्ज़ाम जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई करने जो मुतालबो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है. Super.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

समूरो के पी पुरमन आहे जाली वीडियोस जी खबर पेजी विंदी आहे असाजी नियत साफ आहे हुकूमत लीड कंदी त सुठा नतीजा निकरंदा वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी चयो आहे त शहरी दहशतगर्दी खां आजपो चाहिन था हुननि जो ख्याल हो त सूबे खे जाम करे छॾींदा ऐं बाहियूं ॾींदा समूरो सूबो पुरमन आहे 24 कलाकनि दौरान सूरतहाल खे संभालियो पख़्तूनख़्वा हुकूमत खे गॾिजी कम करण जी दरख़्वास्त कई पर हुननि न ॿुधी सूबे में पुलिस ऐं ॿियनि ज़िलनि खे मज़बूत बणायो वेंदो पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं सलमान अकरम राजा जी अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास सां मुलाक़ात ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद वारी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि वफ़ाक़ी हुकूमत जी क़दमनि ख़िलाफ़ु आला अदलिया सां राब्तो करण ते बि मुशावरत बैरिस्टर गोहर सुभाणे पिशावर हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कंदे चयो आहे त लॉन्ग मार्च ख़तमु नाहे थियो गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ु हर फोरम ते वेंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत सुहेल आफ़रीदीअ खे तहवील में वठण जी तस्दीक करे छॾी सुदसमा वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त केपीअ में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राजबाद सुहेल आफ़रीदी खे तहवील में वरितो वियो आहे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा काबीना जे ॿियनि मेंबर्स बाबति फ़ैसिलो एडवाइज़री काउंसिल कंदी सुहेल आफ़रीदी जी क़यादत में पीटीआई हुकूमत टीटीपीअ सां पावर शेयरिंग तहत कम करे रही हुई गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी ख़िलाफ़ु ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो अवाम रस्तनि ते नाहे निकितो जंहिंजो मक़सदु आहे त अवाम ख़ुशि आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि दानिश आई टी पार्क बाबति इजलास दानिश आई टी पार्क इस्लामाबाद खे आलमी मयार जो मर्कज़ बणाइण जी हिदायत शहबाज़ शरीफ चयो त दानिश आई टी पार्क मनसूबे जो थर्ड पार्टी ऑडिट बि करायो वञे नौजवाननि जी जदीद तरबियत ऐं कोर्सिस लाइ बि घुरबल क़दम खया वञनि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी ख़तमु करण जो मुतालबो इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो त पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान खां रुॻो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमालु रोके खिते में अमन लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे रदि नथो करे सघिजे पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघिजनि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वाइदा पूरा करे

सिंध के मुख्तलिफ शहर में पेटे अलफ पारा मुतालबन की मंताला एहतजाज चूहर जमाली कैनशाह मटियारी शादाद कोट कंबर जैकबाबाद टंडो आदम दादू भान सैदाबाद खिपरो सजावल पनवाकिल इस्लाम कोट नौशरो फिरोज में रैलियों कड़ी हुई मीरपुर खास लखी गुलाम शाह मातली कुंडरी रोहड़ी बिरासिटी पीर जो गोठ सांगर टंडो अलियार तलार ए बन शहर में भी प्राइमरी उस्ताद एहतजाज कर सर्विस स्ट्रक्चर ए बायोमेट्रिक बदलन जख्तियार जिले सतह से डण जो मुतालबो

प्रयालो जे कच्चे में माउ ऐं धीअ क़तल, ॻोठ बुरड़ा नारेजो में हथियारबंदनि सनम नारेजो ऐं संदसि धीअ सलमा खे क़तल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त मक़तूला सनम नारेजो ते संदसि मुड़ुसु एतबार जे क़तल जो इल्ज़ाम हो। उदयपुर भरिसां मोहम्मदपुर वारे इलाइक़े में बि जखराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जखराणी भरिसां हथियारबंदनि हमिलो करे नौजवान शमीर जखराणी खे क़तल कयो। वाके बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई आहे।

0: नवाबशाह के ए सेक्शन थाने के माल खाने में अदालती हुकुम से रखल 52 तोला सोन मुबैना तौर गुम सोन गुम थियण जो एस एस पी शहीद बेनज़ीर आबाद नोटिस वरतो। वाक़े जो केस ए सेक्शन थाने के अगूनन बिन वडन मुंशिन लाल मोहम्मद रिंदा फहीम उनड़ समेत फरहान अली ए सिपाही सदाम ते दाखिल। पुलिस जरिए मूजिब चैनी पुलिस अहलकारन के मुबैना तौर गिरफ्तार कर नामालूम हंध रखो वो है। जांच लाए एस एस पी कमेटी जोड़े छी।
1: सरकारी रेट चवंदा 250 रुपया इतने असंगे 450 रुपया भी मिले 440 रुपया ना सर केर पूछे ही बंद हो के
2: लोगों की हालत है। घर में खाने को नहीं है, लोग कर्ज ले लेके खा रहे हैं। इनका रेट 280 होना चाहिए, ये 450 ब्लैक मार्केट है।
1: दरअसल जाम परेशानी कहाँ असंगे गवर्नमेंट बुधाए तो असा कितना बोरी कहूँ तो पूछने वाला नहीं है। सरकारी मरले में कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा।
0: हैदराबाद में एलपीजी डीलर सरकारी अघन के थुडे छो। सरकारी अघ बदरा मनपसंद अघन से गैस विक्रो कर लगा। शहर मूजिब एलपीजी जो सरकारी अघ 280 रुपया है, डीलर 450 रुपये ताई विक्रो कर रहा है। केर बुधण वो ना नोटिस वरत वे। अहमदपुर वेझो मुबैना पुलिस मुकाबले दौरान हथियारबंदन की फायरिंग में नींगर मारजी वो। पुलिस मूजिब गोठ मलाना जामरी में पुलिस ए हथियारबंदन विच में मुकाबलो थो। हथियारबंदन के घर से फायरिंग सबब टिन वरन जो जुबेर मलाना मारजी वो। मामले की वधिक जांच कर रहा हूं। लाड़काने में सेबको की मुबैना ना हिली, नींगर की हयाती खसे वरती। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस वेझो बिजली की लटकियल तार में करंट लगन सब 8 वरन जो सोहराब मीरानी फौत थी वो। वारसन जो सेबको ते इल्ज़ाम, जिम्मेवार खिलाफ़ कार्रवाई कर इंसाफ करने जो मुतालबो।

पीर जो गोठ में म्यूनसिपल मुलाज़मन पारां पघारू न मिलण तोड़े कटौती खिलाफ़ रैली। मुलाज़मन चयो त म्यूनसिपल चेयरमैन ऐं चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर बिना जवाब पघारू रोके छॾियूं आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां हर मुलाज़िम जूं पघारूं कटियूं पियूं वञनि, नाइंसाफ़ियूं बंदि कयूं वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मोरो अलमुराद मेडिकल सेंटर नज़्द मालपिड़ी मेन रोड मोरो में डॉक्टर वकार हुसैन ज़रदारी MBBS MS आर्थोपेडिक हॾन जोड़न ऐं रीढ़ जे हॾे जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन। गोॾनि जो सूर चेल जो सूर ॻिचीअ ऐं कुल्हनि जो सूर हथ ऐं पेर सुन थियण कुन रग जो सूर हॾनि जो भॼण फ्रेक्चर हॾनि ऐं नसनि सां लाॻापियल तकलीफ़ुनि जो इलाज कंदा आहिनि। टाइम हर सूमर ते सुबुह जो 10:30 खां शाम 5 वॻे ताईं। अलमुराद मेडिकल सेंटर नज़्द मालपिड़ी मेन रोड मोरो में ऐं रोज़ाना 2 खां 8 वॻे ताईं। न्यू गुल सेंटर नवाबशाह। वधीक राब्ते लाइ एडमिन नूर ज़रदारी 0300-377-9754 ऐं खलीक अहमद 0305-8206-336।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछरु ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नज़्द अची मस्जिद दर्श रोड मोरो। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0301-3646-469। खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।
4: खुशखबरी सिंध जो मशहूर अखियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन तुनियुम साबका इंचार्ज अखियुनि जी अस्पताल LRBT गंबट जदीद मशीनुनि ऐं कंप्यूटर वसीले अखियुनि जो चेकअप ऐं लेज़र फीको मशीन वसीले मोतीअ ऐं पाणी जो कामयाब ऑपरेशन कंदा आहिनि। उन खां अलावा कारो पाणी ऐं अखियुनि जी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा ऑपरेशन पिण कया वञनि था। डॉक्टर साहब रोज़ाना सुबुह 9 खां मंझंदि जो 1 वॻे ताईं शुजा अखियुनि जी फलाई अस्पताल दर्स बाईपास चौक मोरो में मरीज़नि जो चेकअप ऐं ऑपरेशन कंदा आहिनि। वधीक मालूमात जे लाइ 0301 3

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ਰੇਡੀਓ ਕੇ GAFM 88 ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾ ਸਣ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ। जगदे असन आवाज ताई पचे ता बिल्कुल मैसेज मोकले सको ता लिखो MTI स्पेस दियो पेने गोठे शहर जे नालो लिखो पेने नालो लिखो 8881 881 ते मैसेज असंगे डियारे मोकल जो दिसंदा सी दस सगर केर है असद अली नोतकाणी साहब असंगे जॉइन कयो है नियाज अहमद नोतकाणी बल्कि नियाज अहमद रिजामाणी साहब असंगे मिले तो अमल के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मिठा मानो मातली शहर का वहां असंगे जॉइन कयो है असि आके वेलकम चंदा सी भली कार खुश जो आबाद जो गोठ शहीद फाजल राहू का।

वेलकम बैक मजे सामाइन ही आहे जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क अमा शो बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम आई अमा जे नाम आहिनि मोहब्बतूं प्यार ऐं महजैब अमा जो साथी अमा जो आरजो अमा जो पंहिंजो यूनिस बकारी अमा सां मुखातिब आहे अवां ही आवाज़ किथे किथे कनायो पिया जिन जिन इलाइक़नि वाहिणनि वस्तियुनि ऐं बस्तियुनि में असांजो आवाज़ पहुची पियो सभिनी खे वेलकम ऐं भलीकार चवंदे असीं अॻिते वधूं था जंहिंमें अवां जा मैसेजिस जिते जिते असां पहुचनि पिया तव्हां असांखे ॿुधो पिया शामिल कंदा हलंदासीं सो जनाब असांखे झलूरी खां ख़ालिक लाशारी साहिब ज्वाइन कयो आहे ख़ालिक महिरबानी अवां जूं अवां झलूरी खां असांखे ॿुधो पिया वॾा वॾा अवां जा थैंक यू जो अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे तमामु घणी मोहबतूं भलीकार चवंदासीं ऐं जनाब यकीननि न्यूज़ ना जॾहिं वधंदासीं त ब्रेक न हलंदासीं ऐं उन ब्रेक खां पोइ असां वरी अवां जूं कॉल्स शामिलु कंदासीं पर फ़िलहालु त

जखराणी रहमत अली जखराणी प्रोग्राम के पसंद कयो है तमाम घणी मोहब्बतूं भलीकार चवंदासीं सुहिणा साईं अव्हांखे जुग जुग जीओ ऐं सदाई सुखिया हुजो शाल अव्हांजी मुर्क मेरी न थी जी दोस्तों मेहरबानो कदरदान जल्दी जल्दी से टाइप करे वठो MTI थोड़ो स्पेस दियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में असां सां गॾु हाणे केरु जुड़े थो अवां सभिनी जूं महिरबानी आहिनि जिन जिन पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां टाइम कढियो आहे जेके ग़ौर सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां असांखे ॿुधनि पिया सभिनी

खुदा के वास्ते अब बेरुखी से काम न ले, तड़प के फिर कोई तेरे दामन को थाम न ले। जमाने भर में है चर्चे मेरी तबाही के, मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले। हाँ, मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले। बेटा हाजी गुलाम खास के लिए झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए बुदे पे तमाम घने मेहरबानी वड़ा वड़ा वहां जाए।

0: शहीद फाजिल राहू खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहम्मद जुमन खासकेली अवां जो तमाम घणी महिरबानी मोहम्मद जुमन खासकेली साहब थैंक यू अवां खे चंदासी भलीकार अवां लिखियो भा यूनिस बकारी साहब अच्छा भा मीर मुर्क ऐं मोहम्मद खान खे सलाम ॾियो अच्छा जी जेकॾहिं ॿुधंदा हूंदा त वालेकुम सलाम ज़रूरु चवंदा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी मां अव्हांखे वेलकम चवां थो भलीकार चवां थो ऐं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो त पोइ अव्हांजे लाइ ट्रैक हली रहियो आहे सुरैया सूमर जो इन ट्रैक ऐं ब्रेक खां पोइ न्यूज़ ब्रेक हूंदो ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ कमर्शियल ब्रेक कमर्शियल ब्रेक खां पोइ बिना ब्रेक अवां सां गॾु अव्हांजी यूनिस बकारी हूंदो शामिल ऐं अव्हां जूं कॉल्स बि शामिल कंदासीं त पोइ असां सां गॾु हूंदव न तव्हां जेकॾहिं हा त पोइ वाह वाह
1: वफ़ा
0: करी हा ज़िंदगी तबे जबरदस्त ट्रैक अवांजे लाइ गूंजे थो

0: ಜನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲಿಕಾರ್ दानिश बकारी साहब असें ज्वाइन किया दानिश वेलकम चौदासी तक आइडिया डी राय डी है बैकग्राउंड जो वॉल्यूम थोड़ा घट के ओके साई हाजिर थैंक यू वेरी मच ते याद दियारे तो बैकग्राउंड की आवाज़ वधिक है ओके दिसंदासी कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केर साहब है किथा का रुस्तम अली पवार के बलिकार चवंदासी केड़ा हाल है ठीक आयो चंगा भला नालो खणो जैसे रेडियो ते बजाय टेलीफोन ते प्रोग्राम असो बुधायो थैंक यू मलिक मोहम्मद बलोच साहब वालेकुम केर साहब है किथा का
2: जेकमा बात का रहमत अली जखरानी आला तो
0: चाला रहमत अली जखरानी साहब खुश आयो जेके बाबा जी मौसम किया
2: मौसम जड़ाली मौसम तो बेहतरीन जबरदस्त मौसम सर बेटर दिन थे
0: हां भला गर्मी है या सर्दी है
2: ना ना गर्मी हली है सर
0: गर्मी खत्म थी वई है हन मौसम नॉर्मल थी वई अच्छा आवाज अगर भी केर पे बुदे सबनी जो मेहरबानी लख थोरा मिठन मानों जा लख थोरा जेके असंग ज्वाइन करे चुका है

0: ਓਕੇ ਜਨਾਬ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਪਿਓ अलहमद लाला दुआ है तुम केर पे गलो ओ सबानाज माना नालो याद करणो पे जियो शो सुठो पे हले अच्छा आमीन सुम आमीन अल्लाह साईं तव्हां खे बि ख़ुशि रखे सदाई सुखिया हुजो थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम जे हवाले सां छा चवंदा थैंक यू अञा प्रोग्राम वधीक कयूं थैंक यू तमामु घणी महिरबानी दुआउनि जे लाइ लख थोरा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तमामु घणी महिरबानी जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो आवाज़ जेकॾहिं अव्हां असांजो आवाज़ कनायो पिया तव्हां शामिल थी सघो था 2044-3525-786 ते ॾिसंदासीं कॉल कंहिंजी आहे हलो अस्सलाम वालेकुम सर अलहमदुलिल्लाह केरु साहब ऐं किथां खां पिया ॻाल्हाइनि छा हाल चांडिया साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे अलाह पाक जा कहिड़ो ॾे करम आहिनि तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे सभिनी भाइरनि जूं महिरबानी लख थोरा थैंक यू वेरी मच तव्हां कॉल कई जल्दी खणी वठो साईं
1: मुंहिंजो भाउ आसम खान चांडियो बाबर चांडियो ज़ुल्फ़िकार चांडियो
0: जी जी महिरबानी सर लख तौर लख तौर ख़ुशि हुजो आबाद साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अव्हांजो मोहबत ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल साईं मिठा माण्हू ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला
1: अलाह साईं जा एहसान तव्हां भाइरनि जूं दुआऊं तव्हांजो हालु हाल तव्हां ठीकु ठाक आहियो तव्हांजी पूरी टीम ख़ुशि आहे
0: शुक्र अलहमदुल्ला जी एफ एम 88 सॼो सभु ठीकु आहिनि ऐं अव्हां सां गॾु ॿियो केरु आहे केरु पियो ॿुधे
1: असां सां सॼी सिंध सड़े थी

0: दर्ज कराना है।
1: किरोड़े कुर्ब सबनी जो मेहरबानी लखत हो रहा साईं लखत हो रहा। ओके जनाब हे GFM88 रेडियो नेटवर्क भली में फिल भला मानू भली आया भली में फिल भला मानू भली आया अखियों आतियों हुयों जिन लाए हली आया सो जनाब आवाज मैसेज वन कॉल्स हुंदी जारी एकड़ो ब्रेक वठणो पर कॉल अटेंड करे था टू हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब हैं किथा का मेहरबानी लखत हो रहा सोना साईं आवाज अगर भी केर शामिल है
2: जी सर
1: जी जी आवाज अगर भी केर शामिल है दोस्तन ने नाला वठंदो
2: जी हेलो
1: ओके जनाब ज्यादा हेलो हेलो न थंदी गाल मा गाल थिंदी ब्रेक वठनो कमर्शियल ब्रेक है बिना ब्रेक वापस इंदा सी असन जो अध कला के साथ बाकी सलामत रहंदो

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: ऐ बेरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जो खूबियो ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बिहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन संगरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: ॾाढो सुठो
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़

0: ॾिसंदासीं त हाणे असांखे कॉल ते केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: केरु साहब ऐं किथां खां?
1: नज़र हुसैन चांडियो थो ॻाल्हायां, खीतर जबल खां.
0: जी, छा हाल आहे चांडिया साहब? ख़ुशि आहियो?
1: केर लाहमंदो, तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुलिल्लाह. अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: जी, मुंहिंजा ॿाहिरि अदीब हुसैन, नज़र हुसैन ऐं आजिद हुसैन.
0: जी जी, महिरबानी तव्हां सभिनी जो.
1: प्यारो बाबर हुसैन,
0: कहिड़ो ने कुर्ब सुहिणा साईं, कहिड़ो ने कुर्ब. थैंक यू.

0: ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: अल्लाह
0: पाक जा एहसान आहिनि, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? वालेकुम अस्सलाम। लख थोरा सोणा साईं, लख थोरा खुश हुजो। साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में यूनुस बकारी वञण वारो आहे, शो पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, वालेकुम अस्सलाम। केरु साहिब ऐं किथां खां? छा हाल आहे अज़ली भुट्टो साहिब, ख़ुशि आहियो? अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? सभिनी जूं महिरबानी, जेतिरा ॿुधनि पिया सभिनी जूं महिरबानी।
2: हा,
0: सभिनी जूं महिरबानी। लख थोरा, लख थोरा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू मिठो माण्हू, लख थोरा।

0: कन्हे वल सो सोना सांवल इसनासी कॉल पे के रहे जो आखिरी गानो है आखिरी कालो है इसनासी कॉल पे के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा का
1: सर खान चांडिया को गलाया गोपाल कृष्ण देखा
0: जी चांडिया साहब वहां से कद भी केर पे बुदे
1: मेरा दोस्त ने इम्तियाज चांडिया ममता चांडिया
0: जी जी
1: गंदर चांडिया
0: तमाम घणी मेहरबानी लख थोरा सोना सा जलाल चांडी जी सुरीली सदा सिंध जी हवाओं में गूंजे थी संदासी कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम आवाज अच्छे पे हो ओके जनाब शायद हमरा कॉल मुके मिलाई है गाली हूं ओड़े पाड़े सा पे करे सनासी तो कॉल ते के रहा है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केर साहब है किथा का
2: कच्ची बको
0: जी हमारा सा करीब केर पे बुदे जी जी मेहरबानी हवा जो लख थोरा हवा जी कॉल जो आवाज शायद सिग्नल घटेन थैंक यू भली कार है ये है जी FM 88 रेडियो नेटवर्क

दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरों भाई लफ्जन जी लुगत जो जाने नथो वरकु सोई माने नथो लफ्जन जी लुगत जो जाने नथो मुरकु सोई माने नथो चंड चथरों कंदे धरती के चयो तंजो औलाद तक सुणाने इन्हें ये तेजो को प्रोग्राम पुजानी ते पहुंचे था साज ऐं आवाज़ जे साथ जी पुॼाणी नाहे थींदी साज़ तेसीं ताईं सलामत हूंदा जेसिताईं सिंध वारा सिंध जी मौसीक़ी ॿुधंदा आवाज़ मुसाफ़िर बणजी मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उन ताईं पहुचंदा दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो वक़्त जे वहिकरे में वञण जी वाई वरे थी यूनुस बकारी मोकिलाए थो साज़ ऐं आवाज़ जो साथ पुॼाणी ते पहुचाए इनशाला वरी मिलंदासीं हयाती रही त सुभाणे शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं जो मेलो मचंदो तेसी ताईं यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दरु बणजनि साथ सलामत सिक सलामत अलाह निकिबान

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स.

ब्राज़ीली फ़ौज जी आला सतही वफ़द जो GHQ जो दौरो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां मुलाक़ात, ॿिन्ही मुल्कनि जो लाॻापन ते एतमाद जो इज़हार, दिफ़ाई सहकार खे वधीक वधाइण ते बि इतफ़ाक़ कयो वियो। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल ब्राज़ील सां दिफ़ाई लाॻापन खे मज़बूत बणाइण वारो अज़म वरिजायो। ब्राज़ील जे फ़ौजी सरबराह पाक फ़ौज जे पेशेवराणी सलाहियतुनि ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि खे साराहियो ऐं इलाक़ाई अमुन इस्तेहकाम लाइ पाक फ़ौज जे किरदार जो एतिराफ़ कयो। पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी ख़तमु करण जो मुतालबो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म जो चवणो हो त पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां रुॻो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमालु रोकनि। ख़िते में अमुन लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे। पाकिस्तान में सरहद पार थींदड़ हमला बर्दाश्त नथा करे सघजनि। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वाइदा पूरा करे। सऊदी अरब जी शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते वधीक हिकु हमिलो, पाकिस्तानी शहरी शहीद, 11 ज़ख़्मी। शाह खालिद ऐं शाह फहद एयरपोर्ट्स ते फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। सऊदी अरब पारां हमले में पाकिस्तानी शहरीअ जी शहीद थियण जी तस्दीक। सऊदी जे तवानाई वारे वज़ीर चयो त हूसिन जे हमलनि जो सख़्तु जवाबु ॾियणु घुरिजे।

ॿिनि इस्लामी मुल्कनि में जंग जा हामी नायूं ईरानी सऊदी ऐं हौसिनि में छिकताण घटाइण लाइ सालसी लाइ तयारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त इस्लामी मुल्कनि में जंग जो फ़ाइदो इसराइल खे थी रहियो आहे। अमरीकी जवाब ते ग़ौर जारी आहे। जल्द सालसनि खे तहरान पंहिंजो जवाब ॾींदो। आबनाए हुरमस ते अमरीका ऐं ईरान में डेडलॉक बरक़रार। कतरी सालसी बि अघु भराई कराए न सघी। आबनाए हुरमस में तेल बरदार ॿेड़नि ते हमला जारी। अमरीका बि तहरान जी बहरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करे छॾी। ईरान सत शर्तुनि ते अमरीकी जवाब खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई चयो आहे त अमरीका सत शर्तुनि मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। अमरीका ॿीहर हमिलो कयो त विच ओभर में मौजूदु अमरीकी डेटा सेंटर्स ऐं AI मर्कज़ तबाह करे छॾींदासीं। बलोचिस्तान जे शहर कोटिया में पाक फ़ौज जो तरबियती जहाज़ किरी तबाह। जहाज़ में सवार ॿई पायलट शहीद। ISPR मूजिबि मशाक तरबियती जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में पायलट मेजर हसनैन शहज़ाद ऐं कैप्टन अब्दुल समंद शहादत माणी। तरबियती जहाज़ फ़नी ख़राबी सबबि किरी तबाह थियो। सदर वज़ीर आज़म पारां तरबियती जहाज़ जे हादसे में ॿिनि पायलट जी शहादत ते ॾुख जो इज़हारु।

सखल में रेलवे ट्रैक के नाले ते रेलवे वारा होटल ने शादी हॉल ठाए रहा आइन ही न थे जो मुतासर औरतन के दहशतगर्द करा दे इते भी गवर्नर राज लगाए बने सखल जे मेयर अरसलान इस्लाम शेख जो है इते औरतन के वारन खा वठी गेलो वने तो एड़ो जंग जो कानून बर्दाश्त जोगो ना है म्युनिसिपल जे जमीन ते भी रेलवे मालकी जी दावा कर रही है इन जमीन ते मानू सालन खा आबाद आन एक कमेटी ठाए ऐलानियल क्वार्टर गरीबन हवाले कया वन सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पेटे अलिफ पारा मुतालबन की मंता एहतजाज चूहड़ जमाली अकेन शाह मटियारी शहदाद कोट ए बेन शहर में रैलियं कड़ी व्यू मीरपुर खास लकी गुलाम शाह मातली कुंडी रोहड़ी भरा सिटी पीर जो गोठ में भी रैलियं कड़ी व्यू सर्विस स्ट्रक्चर ए बायोमेट्रिक बदलने का अख्तियार जिले सतह से डेण जो मुतालबो

प्रयालो के कच्चे में माओ ए धीए कतल गोट बुरड़ा नारे जो में हथियारबंदन सनम नारे जो संदस धीए सलमा के कतल कयो। पुलिस जो चवण है तो मकतूला सनम नारे जो ते संदस मुड़स एतबार के कतल जो इल्ज़ाम हो। दोदापुर बरसा मोहम्मदपुर वाले इलाके में जखरानी बिरादरी के बिन धुरन में पुराने तकरार ता हथियारबंदन फायरिंग कर एक जने के कतल कर छो। गोठ गुलाम हुसैन जखरानी वेझो हथियारबंदन हमलों कर नौजवान शमीर जखरानी के कतल कर वाके बाद धुरन में छिकतान तेज थी वही।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

हो जेको आलम लए रहमत महबूब खुदा जी सिफत हो जेको आलम लए रहमत महबूब खुदा।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: ரணச தட்டோப்புத்து.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की। या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तू अच्छा लगता है। वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा, वक्त मिला तो सोचेंगे।

दोस्तों अच्छा तो गज्जी गुलाम अली खान साहब जी ये खूबसूरत गजल गज्जी इंजॉय क्यों मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा।

दिल से लगाकर ठुकराए हुए लोग हैं हम। दिल से लगाकर ठुकराए हुए लोग हैं हम। अफसोस कीजिए, सबक लीजिए, किनारा कीजिए। दिल से लगाकर ठुकराए हुए लोग हैं हम। अफसोस कीजिए, सबक लीजिए, किनारा कीजिए। हमारे बाद मोहब्बत पे एतबार न हो, हमारे बाद मोहब्बत पे एतबार न हो, अगर हो भी तो ज़रा सोच कर किया कीजिए। हमें भी इश्क ने पत्थर बना दिया आखिर, हमें भी इश्क ने पत्थर बना दिया आखिर, अब आईना न दिखाइए, गुजारा कीजिए। वो एक शख्स हमारी तमाम दुनिया थी, वो एक शख्स हमारी तमाम दुनिया थी, अब उसके जिक्र पे भी बस दुआ कीजिए। दिल से लगाकर ठुकराए हुए लोग हैं हम। अफसोस कीजिए, सबक लीजिए, किनारा कीजिए।

0: प्रोग्राम दिल्ली गाल से गडा हुआ है आबिद चौहान आए अवा बुधी रहे आओ GAFM नेटवर्क जिन दोस्तन असा के न्यूली ट्यून क्यों आए अज ट्यून क्यों आए या असा जे प्रोग्राम में शामिल न थी सग्यान आए प्रोग्राम बुधन पिया तब उन्हें के असा पहन जो लाइव कॉलिंग नंबर बुधाई डालूं असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आए 03000113488 प्रोग्राम जो पैटर्न मुख्तलिफ दोस्तन जो मुख्तलिफ आ रहा हूं तजवीजूं शामिल थींदियूं रहंदियूं लाइव कॉल्स वसीले मैसेज टेक्स्ट वसीले इवन कुछ दोस्त जगह लाइवली मुख्य बुधी रहा हूं उन्होंने सा मुलाकात जैसे होंगी है कॉलर्स का हटी कर मुझा पर्सनल फ्रेंड्स कम्युनिटी हल्के अहबाब में जिते भी डिस्कस दिल की गाल थींदी है या उन्हें डिफरेंट नोयत से मुझा रिस्पॉन्स हूँ पर मु अग में भी अर्ज रखो तो बुधण वा चाहण वा कन आऊँ नाचीज बंद हकीर एक आया सो तरें सभी की बुधी जैसे किथे भी थोड़ो घड़ो ऊंच नीच ए गलती हुए तो उनके इग्नोर कदा मुझी कोशिश होंगी तो प्रोग्राम का बेहतर के बेहतर कजे बेहतर का बेहतर कजे काफ़ी कॉलर्स मुख्य मशवरों इो भी दींदन कंप्लीटली पूरा पोर्शन यानी कि पूरा कलाक रुगो जो शायरी शामिल हुए या अवज की पसंद जो को सिलेक्टिव ट्रैक हुए उत्त ही साग्या ही दोस्त वरी मुख्तलिफ़ हंधन से मुख्य यो चवन तो यार अवं का यह शिकायत है तो अव फोन कॉल्स घट शामिल कदा तो समझा तो ये बयानिया एकड़े दोस्त जहाँ बिल्कुल भी न होने घुर्जन पर कुछ दोस्त ये सैम भी बुधा उन्होंने मशवरों एकड़ो दिनों बाद में यह भी शिकायत क्यों तो कॉल अटेंड कट कर बाबा जैसे असा एकड़ो कलाक पूरो पहेंजे पैटर्न से हलदा से तो कॉल शामिल कौन थी सकती पर मुझी वध का वध कोशिश होंगी है तो अवं जो कॉल्स मैक्सिमम जितनी थी सकन शामिल क्या पर तय हूँदे भी अवं के अज प्रोग्राम जो पैटर्न बन सकिन रिपीट भी कयो कॉलिंग नंबर भी बुधायो असा शुरुआत में प्रोग्राम जैमें जी इब्तदा कंदा पैंजे स्लोगन सलाम दुआ का पोए अवां के चूंड कान का गजल को गीत को शायरी नसर में बुधाए कर आफ्टर को चॉइस जो गीत होंद जी वरी मेहरबानी जर नवाजी करम नवाजी तो अवं बर्दाश्त कंदा एनीवेज खोड़ सारियों गालियों गिलाऊँ शिकवाऊँ ए दिल जो गालियों हल्दी रहंदू अवे दिल जो गालियों शामिल कंदे प्रोग्राम में नंढड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का तो वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलंदे ब्रेक का बुधा रहो GAFM नेटवर्क
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
5: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बन जाने तो कोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिला जारी है 4 साल जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की

0: इहे वहां जो मोहब्बतूं मजबूर कंदियूं असां खे पंधु कराईंदियूं ऐं कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां
1: आहे? वालेकुम
0: जी,
1: पर आप ज़मीर में मोरो
0: हाफिज़ ज़मीर बुग्यो मोरो खां। वेलकम वेलकम साईं, बुग्यो साहब वेलकम, भली कार ए वन दुआओं अल्लाह ऐसा नामा बतायो। लख थोरा लख थोरा त पोइ छा ॿुधाईंदो असांजे प्रोग्राम में? अवां छा ॿुधाईंदो दिलि जी ॻाल्हि? मां जेको चवां त पोइ शायरी ॿुधायो, सो बि झुंगारे ॿुधायो। वाह वाह, लाजवाब शायरी जी क्या कहिड़ो था चओ? कहिड़ो कलाम था चओ? जी जी, शामिल कंदासीं प्रोग्राम में, लाज़मी प्रोग्राम ॿुधारो। दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? वॾी महिरबानी, वालेकुम सलाम, कुर्ब सर, थैंक यू।

0: बहुत खुशी थींदी आहे जॾहिं अव्हां जो मान प्यार मिलंदो आहे ऐं अव्हां लाइक कयो था असांजे प्रोग्राम खे ऐं जी एफ एम नेटवर्क जा लिसनर आहियो कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा खां हैलो
1: वालेकुम सलाम अचीले मां बात थो सखर गो
0: सखर गो केर दा
1: अकील मां को
0: अकील मां को
1: जी जी ता क्लास चले
0: मां चवण वारो हूं ता अकील त मुझो प्यारो आए कड़ा हलन खुश आए वकील
1: केर केर अलहमदुलिल्लाह ता प्रोग्राम बुधी वॾी ख़ुशी थी
0: ऐं ख़बर पई की तव्हां मां प्रोग्राम कंदो आहियां उहा तॾहिं ॿुधणु शुरू कयो या मां ॿुधंदड़ आहियो एफ एम काल ईअं ई आभा रश लॻी पई आहे दोस्त सभई महबूबन पहिरीं प्यारा जी कयां अलाह जा एहसान छा चवंदो प्रोग्राम जे पैटर्न मुताबिक़ त दिलि जी ॻाल्हि प्रोग्राम आहे का दिलि जी ॻाल्हि अहिड़ी कयो जो तमामु लिसनर्स असांजा मटियारी हैदराबाद नौशहरो ताईं जिते बि असांजो नेटवर्क आहे उते अव्हांजो आवाज़ु वञी रहियो आहे उन्हनि सां बि अव्हां जी ॻाल्हि ॿोल थी हूंदी छा चवणु चाहींदो लख थोरा अव्हां शामिल कयो का शायरी का चूंड
1: मुंहिंजो
0: यार आहे जिगर आहे दोस्त आहे इहो रिकॉर्ड करे मोकिलजो दोस्त खे महबूबन जी मशहूर मान वारी शख्सियत साईं गुलाम हुसैन मंगणहार जा फर्ज़ंदुकेशन में इल्म अदब में जेको आहे त वॾो नाओ आहे शहर में बल्कि न पर शहर में इहे सरमायो आहिनि सिंध जो इहे सरमायो आहिनि साईं मुल्क सॼे जो पाकिस्तान जो जी कया कहिड़ो कलाम पिया चओ शमन अली मेलनि जो
1: जहिड़ो
0: बि ॿुधायो ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ प्रोग्राम ॿुधायो वॾी महिरबानी लव यू लख लाइक थैंक यू ओके अलाह हाफ़िज़

जी तो दोस्तों ब्रेक ते वञण खां अॻ में हिकत का फरमाइश भी पूरी करे कजे ऐं ॾाढी ख़ुशी थी अजीब इतफ़ाक़ हो त मुझे ओल्ड पुराण क्लास फेलोज मंझां का कॉल अची वई त पोइ शामिल कयूं था शमर अली मिराले जी ख़ूबसूरत आवाज़ में स्पेशली जेके इमोशन्स दोस्त पैदा करे छॾूं उन्हनि सभिनी इमोशन खे फीलिंग्स खे मदे नज़र रखंदे असीं शमर अली मिराले जी आवाज़ में ॿुधंदासीं हीअ हसीन ज़िंदगी कीअं गुज़री वई ख़्वाबु हो या हवा का ख़बर ई न पई ऐं सभिनी दोस्तनि जे नाम स्पेशली अखिल माखो ऐं सैयद सुभान अली शाह ऐं ॿी मुंहिंजी सॼी संगत जंहिं दोस्त नाम खयो ऐं तमामु नेटवर्क जी एफ एम जा लिसनर्स प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि ते ॿुधंदड़नि जे नाम

0: जी दोस्तों, वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक जो, एंड न्यूज़ ब्रेक के बाद में कुछ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक्स, शॉर्ट कमर्शियल न्यूज़ ब्रेक एंड शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पोए वापस वरी वरंदा से बुधंदा रहो जी एफएम नेटवर्क।
1: नौ शहरों मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क।
2: इट्स 10 PM दिस टाइम।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
4: A product by
5: brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो GFM 90.8